तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचै, कहो नानक हम एह हवाला, राग संतन कै पाछै। सोरठ महला पंजवा घर दूजा। मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे, तह तुम रखन हारे, पावक सागर।

कीते कहो मेरे सम्मान करनहार तरन जान तू दाता मांगन कहो सगली दान दे प्रभ पान खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखिया पाई एहो मन तेरा पाई रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हम लाहा खाटिया हर भगत भरे भंडारा संतन मौका पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गो जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कह प्रसादे कहो नानक हर स्यो मन मानिया रंग रते बिस्मादे सोरठ महला पंजवा जेती समग्री।

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर्विद जाने ताकि कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत कौ पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पय स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ता की कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाइथ

होई राजे राम की रखवाली, सुख सहज आनंद गुण गावो, मन तन देह सुखाली रहाओ। पत ते उदाहरण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा, बख्श लय सब सच्चा साहेब, सुन नानक की अरदासा। सोरठ महला पंजवा, बख्शिया पार ब्रह्म परमेसर, सगले रोग बेदारे, गुरपुरे की सरनी उबरे, कार्ज सगल सवारे। हर जन सिमरिया नाम आधार, तापो तारिया सतगुर पूरे, अपनी कृपा तार रहाओ। सदा आनंद करह मेरे प्यारे, हर गोविंद गुर राखिया, वड्डी वड्याई नानक करते की, साच शब्द सतपाखिया। सोरठ महला पंजवा, पय कृपाल स्वामी मेरे, तित साचा दरबार, सतगुर ताप गवाया पाई, ठांड पई संसार। अपने जी जंत आपे राखे, जमै की ओ हटतार, हर के चरण हृदय उतार। सदा सदा प्रभ सिमरिय भाई, दुख किल बिख काटन हार रहाओ। तिसकी सरनी उबरै भाई, जन रचिया सब कोए, करण कारण समर्थ सो भाई, सच्चै सच्ची सोए। नानक प्रभु त्याई है भाई, मन तन शीतल होए, सोरठ महला पंजवा।

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया, होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभु त्याई है हर मंगल नानक गाई है, सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी, हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ, हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जम का फासा मन पूर्ण होई आसा, जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे, निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरा है राखी सरण सचे की ताकी, परमेसर आप हो रखवाला, सांत सहज सुखिन मैं उपजे, मन होवा

मिल साधु दुर्मत होए पद तपुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सब लाथे पाप कमाते गुण गोबिंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बाइत फल पाए गुरपुरा हृदय त्याए गुर गोपाल आनंदा जब जब जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभु अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दह दिस छतर मेघ कटा घट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैना पिर पर दे सिदायो हुन नहीं संदेसरो मायो एक कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रहाओ क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदर चरक पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हाँ हाँ पीत पयो है बीचो सुनत देश निकटायो

जैसा बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै। पिछले अवगुण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावै, हर अंतर जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाइयै। कहना कथन ना पीजै गोविंद हर भावै पैज रखाइयै, अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है। होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती, पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती। सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा, दुख कलेश सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना, कार्य सगले संठे। जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा, जब पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहण ना जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहू आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, एहो पुन पदार्थ तेरा, जन नानक

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवा, ऐथै उथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सा सा संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरनाई, सोरठ महला पंजवा, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावै, बिरथी आस ना जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पद दाता, सोई संत गुण गावै, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावै, आठ पहरो हर का जस रमणा, बिखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरे करते, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपे आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवा, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगे को ना टिकै बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एहो पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आ मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी, बगस अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरा आरा दे, कार्ज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज कहो क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवा, सुख सांद कर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाणै, दास बाणी ब्रह्म खा।

हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपूरे की वडियाई, ताकी कीमत कही ना जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम, जिसनों बख्शल है मेरे प्यारे। सो जस तेरा गावै रहाओ, तू पारो स्वामी मेरा। संता परवासा तेरा, नानक प्रभ शरण आई। मुख निंदक कै शाई, सोरठ महला पंजवा। आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता। परमेश्वर बणत बनाई, फिर डोलत कत हूं नाही। साचे साहेब स्यो मन मान्या, हर सर्व निरंतर जान्या। रहाओ सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला। अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा, नाल नारायण मेरा। जमदूत ना आवै नेरा, कंठ लाए प्रभ राखे। सतगुर की सच साखे, गुर पूरे पूरी कीती। दुश्मन मार विडारे सगले, दास को समत दीती। रहाओ प्रभ सगले थान वसाए, सुख सांद फिर आए। नानक प्रभ पहरा, नानक प्रभ शरण आए। जन सगले रोग मिटाए, सोरठ महला पंजवा। सर्व सुखा का दाता सतगुरु, ताकी सरणी पाई है। दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाई है। हर रस पीवो पाई, नाम जपो नामो आरादो। गुरपूरे की शरणाई रहाओ, तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया। सोई पूर्ण पाई, नानकी बेनंती प्रभ जी। नाम रहा लिवलाई, सोरठ महला पंजवा। करण करावन हरे अंतर जामी, जन अपने की रखै। जय जयकार होत जग पीतर, शब्द गुरु रस चाखै।

जो जन भजन करे प्रभ तेरा तसै अंदेसा नाही, सतगुर चरण लगे पौ मिटिया, हर गुण गाए मन माही, सुख सहज आनंद घनेरे, सतगुर दिया दिलासा, जिन घर आए सोभा सेती, पूर्ण होई आसा, पूरा गुर पूरी मत जांकी, पूर्ण प्रभ के कामा, गुर चरनी लाग तरयो पव सागर, जप नानक हर हर नामा, सोरठ महला पंजवा, पयो किरपाल दीन दुख पंजन, आपे सब ठाती, खिन मैं राख लियो जन अपना, गुरपूरै बेड़ी काटी, मेरे मन गुरु गोविंद सद ध्याई है, सगल कलेस मिटै इस अंते, मन चिंदिया फल पाई है रहाओ, जेते जी जंत जाके सब कीने, प्रभु उच्चा अगम अपारा, साध संग नानक नाम ते आया, मुख उज्जल पए दरबारा, सोरठ महला पंजवा, सिमरो अपना साई, दिन सरैन सत्याई, हाथ दे जन राखे, हर नाम महाराज चाखे, अपने गुरु उपर कुर्बान, भय किरपाल पूर्ण प्रभदाते, जी होए मेहरबान रहाओ, नानक जन सरनाई, जिन पूर्ण पैज रखाई, सगले दुख मिटाई, सुख पुंचाओ मेरे पाई, सोरठ महला पंजवा, सुनो बिनंती ठाकुर मेरे, जी जंत तेरे तारे, राख पैज

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ता कै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मोह मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो न असर मत पाई। बिख्या सक्त रहो निस्बासर न छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना न कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यान कौतावत कह बिदरो कौता है रहाओ। वेद पुराण सिमृत के मत सोनो निमख ना हिये बसावै। पर तन पर धारा सिंह रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जम की फासी। सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिन सत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अज हूं समझ कश बिगड़ो नाहन पज ले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागियो दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे। जब ही निरतन देखियो नरकाओ संग शाड़ सब भागे।

लोभ मोह अवमानना हरख सोग ते रह न्यारो नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग जगते रह निरासा काम क्रोध जे परस नाहनो ते कट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जेह नर कौ कीनी तेह ए जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी सोरठ महला नावा प्रीतम जान लेहो मन माही अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ को काहू को नाही रहाओ सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहू दिस ठेरै विपत परी सभी संग छाड़त को न आवत नेरै कर की नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी जब ही हंस तजी एकाया प्रेत प्रेत कर पागी एह बिद को व्योहार बनयो है जास्यो नेहो लगायो अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो सोरठ महला पहला कर पहला अष्टपदियां चौथ की एको अंकार सतगुरु प्रसाद दुबदा ना पड़ो हर बिन होर ना पूजो बड़े मसान ना जाई तृष्णा राजना पर कर जावा तृष्णा नाम बुझाई कर पीतर कर गुरु दिखाया सहज रते मन पाई तू आपे दाना आपे बिना तू देवे मत साई मन बैरागृत बैरागी शब्द मन बेदिया मेरी माई अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहेब स्यों लिवलाई रहाओ असंख बैरागी कह बैराग सो बैरागी जे खसमै पावै हृदय शब्द सदा पैरचिया गुर की कार कमावै एको चेतै मनुआ ना डोलै तावत वर्ज रहावै सहजे माता सदा रंग राता साचे के गुण गावै मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जे बा नेत्र सोतर सच राते जल बुझी तुझै बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई पिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई दुबदा विच बैराग ना होवी जब लग दूजी राई सब जग तेरा तू एको दाता अवर ना दूजा पाई मनमुख जंत दुख सदा निवासी गुरमुख दे वड्याई अपर अपार अगाम्य गोचर कहना कीम ना पाई सुन समाद महा परमार्थ तीन पवन पत नामं मस्तक लेख जिया जग जोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भक्त दरणामं मन मुख झूठ लह पै मानं आपे ज्ञान अगामं जिन चाखिया से साध जान ज्यो गुंगे मिठे आई अकथै का क्या कथिया पाई चलो सदार जाई गुरदाता मेले ता मत होवै निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चालै पाई होर क्या को करे चितराई एक परम भुला एक भगती राते तेरा खेल अपारा जित तुद लाए तेहा फल पाया तू हुक्म चलावन हारा सेवा करी जे किश होवै अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिलिया कृपा कीनी एक अमृत नाम आधारा गगनंतर वासिया गुण परगासिया गुण में ज्ञान ध्यानं नाम मन पावै कह कहावै तत्तो तत्व खानं शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बोरानं पूरा बैरागी सहज सुपागी सच नानक मन मानं सोरठ महला पहला
ਤੇ ਤੁਕੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਬੰਧਨੀ ਪਾਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬੰਧਕਾਰੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਗ ਜਾਇਆ ਪਾਈ ਬਿਨਸੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਣੀ ਪਾਈ ਕਰਮ ਸਭੇ ਬੇਕਾਰੀ ਸੁਣ ਪੰਡਿਤ ਕਰਮਾਕਾਰੀ ਜਿਤ ਕਰਮ ਸੁਖੀ ਉਪਜੈ ਪਾਈ ਸੋ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਰਹਾਓ ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਬਕੈ ਖੜੋ ਪਾਈ ਕਰਮ ਕਰੋ ਸੰਸਾਰੀ ਪਾਖੰਡ ਮਹਿਲ ਨ ਚੁਕਈ ਪਾਈ ਅੰਤਰ ਮਹਿਲ ਵਿਕਾਰੀ ਇਨ ਬਿਦ ਡੂਬੀ ਮਾਕਰੀ ਪਾਈ ਉਂਡੀ ਸਿਰਕੈ ਭਾਰੀ ਦੁਰਮਤ ਕਣੀ ਮੇਗੂਤੀ ਪਾਈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਖੁਆਈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਾਈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਏ ਪਾਈ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹਾਈ ਸਾਚ ਸਹਿਜ ਗੁਰ ਤੇ ਉਪਜੈ ਪਾਈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਜ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਬੂਝੈ ਪਾਈ ਗੁਰਬਿਨ ਮਗ ਨਾ ਪਾਈ ਜਿਸ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ਪਾਈ ਕੂੜ ਬੋਲ ਬਿਖ ਖਾਈ ਪੰਡਿਤ ਦਹੀਂ ਵਿਲੋਈਐ ਪਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੈ ਤੱਥ ਜਲ ਮਥੀਐ ਜਲ ਦੇਖੀਐ ਪਾਈ ਇਹੋ ਜਗ ਇਹਾ ਵੱਥ ਗੁਰਬਿਨ ਭਰਮ ਵਿਗੁਚੀਐ ਪਾਈ ਘਟਕਟ ਦਿਓ ਅਲਖ ਇਹੋ ਜਗ ਤਾਗੋ ਸੂਤ ਕੋ ਪਾਈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਬਾਂਧੋ ਮਾਏ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਾਂਠ ਨਾ ਛੂਟਈ ਪਾਈ ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਇਹੋ ਜਗ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਪਾਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਭਉ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਈ ਪੈ ਮਰਨਾ ਸਚ ਲੇਖ ਮੱਜਨ ਦਾਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਪਾਈ ਦਰਗਹਿ ਨਾਮ ਵਸੇਖ ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਜਿਨ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਪਾਈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਝੂਖਾ ਪੇਖ ਇਹੋ ਤਨ ਹਾਟ ਸਰਾਫ

मेरे प्रभ सालाहन से पले प्यारे शब्द रते रंग होए तिसकी संगत जे मिले प्यारे रस लै तत्व लोए पत प्रवाना साच का प्यारे नाम सच्चा निशान आया लिख लै जावना प्यारे हुक्मी हुक्म पछाण गुरबिन हुक्म ना बूझिया प्यारे साचे साचा तान हुक्मे अंदर निम्या प्यारे हुक्मे उधर मजार हुक्मे अंदर जम्या प्यारे ऊंदो सिर कै पार गुरमुख दर गै जानिए प्यारे चले कारज सार हुक्मे अंदर आया प्यारे हुक्मे जादो जाए हुक्मे बन चलाइए प्यारे मन मुख लह सजाए हुक्मे शब्द पछाणिए प्यारे दरगह पैंदा जाए हुक्मे गणत गणाइए प्यारे हुक्मे होमे दोए हुक्मे पवे पवाइए प्यारे अवगण मुठी रोए हुक्म सियापै सहाका प्यारे सच मिलै वड्याई होए आखण औखा आखिए प्यारे क्यों सुनिए सच नाओ जिन्नी सो सालाहया प्यारे हौ तिन बलिहारै जाओ नाओ मिलै संतोखिया प्यारे नदरी मेल मिलाओ काया कागद जेठिए प्यारे मन मसवाणी तार ललता लेखन सच की प्यारे हर गुण लिखो विचार तन लेखारी नानका प्यारे साच लिखे उर तार सोरठ महला पहला पहला दो तुगी तू गुणदाता निर्मल पाई निर्मल ना मन होए हम अपराधी निर्गुणे पाई तुझी ते गुण सोए

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूड़ो रूड़ो आखिए पाई, रूड़ो लाल चलूल, जे मन हर स्यों बैरागिए पाई, दर कर साचया पूल। पाता लिया कास तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुढ़े तेहे। गुर बिन अलख न लखिए पाई, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, बिरह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हर नाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो, हर नाक समार पजाया। गुरमुखां नू प्रतीत है हर जियो, मनमुख परम भुलाया, हर जी एह तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगतां नूं जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़ै जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई। मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड कपट पाज लहि जासी, मनमुख फीका आ लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हों मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब का ईश्वर नहारा। ओना की रीस करे सो विगुचे, जिन हर प्रभ है रखवारा, बिन सतगुर सेवे किने ना पाया, मनमुख पौंक मोए बिललाई। आवे जावे ठौर ना पावे, दुख में दुख समाई, गुरमुख होवे सो अमृत पीवे, सहजे साज समाई। बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़े, जे अनेक कर्म करे अधकाई, वेद पढ़े ते वाद वखाणे, बिन हर पत गवाई। सच्चा सतगुर साची जिस बाणी, पज छूटे गुर सरनाई। जिन हर मन वसिया से दर सच है सचियारा, ओना दी सोभा जुग जुग होई, कोई न मिटन हारा। नानक तिन कै सद बलिहार है, जिन हर राखिया और तारा, सोरठ महला तीजा दो तुकी। निगुणिया नो आपे बख्श ले पाई, सतगुर की सेवा लाए। सतगुर की सेवा उत्तम है पाई, राम नाम चित लाए, हर जियो वापे बख्श मिलाए। गुणहीन हम अपराधी पाई, पूरे सतगुर लय रलाए रहाओ। कौन कौन अपराधी बख्शियन प्यारे,
ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਭਉ ਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਨ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੈ ਚਾੜ ਮਨੂਰੈ ਤੇ ਕੰਚਨ ਭਏ ਪਾਈ ਗੁਰਪਾਰਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਉ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਏ ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਨੈ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਤਿਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਓ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਈ ਗੁਰਮਤ ਸਹਿਜ ਸਮਾਓ ਗੁਰਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੈ ਪਾਈ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਕਰ ਪਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਗੁਰਮਤੀ ਪਉ ਉਪਜੈ ਪਾਈ ਪਉ ਕਰਨੀ ਸਚਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਪਾਈ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਪਾਈ ਤਿਨਕੈ ਹਉ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜਨਮ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਕੁਲਪੀ ਲਈ ਬਖਸਾਏ ਸੱਚ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਾਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ ਪਾਈ ਤਿਸ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिन तू विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहा मूल साक्त संग ना की जई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिले हर विसरै प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिले प्यारे दरगै मिले सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पां प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागै गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कू न चली नाल सतगुर जिना मिलायोन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंधन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देओ प्यारे भगतां तिसका तान ते सरनाई टै पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंगम साधे पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बाधे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरियो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन्न बस्त्र भूम बहु अरपे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडाओ तो खट कर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मै हर स्यों संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे कालहना तेरो सेवक हे रंग माता पयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एह मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेय पै वसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग सदा सिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर पावै नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले
हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरतै ओ पावन हारिया, हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर कौ वारिया। श्लोक महला तीजा। हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए, एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पाए, नानक सच कमाए महला तीजा। सफल्यो सतगुर सेवया, तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै, सही पुरख सुजान। कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे प्रमाण है, मनमुख जन्म मराहे, नानक मोए ना आखिया, जे गुर कै शब्द सुमाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम सुमाई है, हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है, हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइया। श्लोक महला तीजा। पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाईयन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मुयास, जिनी गुरमुख नाम ना चेतियो से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा बहुत घना पुत कलातना साथ कोई जास, लोकां विच मोह काला होवा अंदर उबे सास, मनमुखां कोना विसही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखां नो सुख अगला जिनांतर नाम निवास। महला तीजा। से सैन से सज्जना जे गुरमुख मिले सुभाए, सतगुर का पाणा अंदन करे से सच रहे सुमाए, दूजे पाए लगे सज्जन ना आखिए जे अपमान करे वेकार, मनमुख आप स्वार्थी कारज ना सके सवार, नानक पूर्व लिखिया कमावना कोई न मिटन हार। पौड़ी तुद आपे जगतो पाए कै आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया माया मोह वधाया, विच हमें लेखा मंगिया फिर आवै जाया, जिन्ना हर आप कृपा करे से गुर समझाया, बलिहारी गुर अपने सदा सदा कुमाया। सलोक महला तीजा। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे, जिन्नी सच नाम चित लाया, बिना मैं जग कमला फिरै गुरमुख नदरी आया, तंदा करत्या निफल जन्म गवाया, सुखदाता मन ना वसाया, नानक नाम तिन्ना कौ मिलिया जिनको तुर लिख पाया। महला तीजा। कर ही मैं अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया, जो कस्तूरी मृग न जाने परम दा परम पुलाया, अमृत ताज बिख संग्रह करता आप खोवाया, गुरमुख विरले सोजी पई तिन्ना अंदर ब्रह्म दिखाया, तन मन शीतल होया रसना हर साध आया, सबदे ही ना उपजै सबदे मेल मिलाया, बिन शब्द सब जग बौराना बिरथा जन्म गवाया, अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया। पौड़ी सो हर पुरख्या गम है,
कहो कित बिद पाई है तिस रूप ना रेख्या दृष्ट कहो जन क्यों त्याई है। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई है जिस आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाई है। गुर पूरै वे खा लिया गुर सेवा पाई है। श्लोक महला तीजा ज्यो तन कोलू पीड़ी है रतना पूरी डेह जियो वन्या चौखनी है सच्चे संदड़े ने नानक मेल न चुकई राती अतैडे महला तीजा। सज्जन मेंडा रंगला रंग लाए मन ले ज्यो मां जीठे कपड़े रंगे पी पाहे नानक रंग न उतरै ब्याह न लगै के हे। पौड़ी हर आप वरतै आप हर आप बुलाएंदा हर आपे सृष्ट सवार सिर तंदै लाएंदा। एक ना भगती लाए एक आप खवाएंदा एक ना मार्ग पाए कुजड़ पाएंदा। जन नानक नाम ते आए गुरमुख गुण गाएंदा। श्लोक महला तीजा सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हो मैं विचों जाए। बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे रह समाए इस जग में नाम अलभ है गुरमुख वसे मन आए। नानक जो गुर सेवा अपना हों तिन बलिहार है जाओ। महला तीजा मनमुख मान्या जित है दूजे लगै जाए। तिसनो सुख सुपने नहीं दुखे दुख विहाए। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके सिद्ध समाध लगाए एह मनवस नाया वही थके कर्म कुमाए। पेख तारी पेख कर थके अड़सठ तीर्थ नाए। मन की सार ना जाननी हम मैं परम पुलाए। गुर प्रसादी पौ पया वड़ भाग वस्या मन आए। पै पया मन वस होवा हम मैं शब्द जलाए। सच रते से निर्मले ज्योति ज्योत मिलाए सदगुर मिले ना हो पाया नानक सुख समाए। पौड़ी एह भूप तराने रंग दिन चार सुहावना एह माया रंग सुंब खिन मैं लै जावना। चलदिया नाल ना चलै सिर पाप लै जावना जा पकड़ चलाया काल ता खरा डरावना। ओ वेला हथ न आवै फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाहे फिर मिलना पाए नी जमै तै मर जाहे। सहसा रोग ना छोड़ई दुखी मैं दुख पाहे। नानक नदरी बख्श लेहे सब दे मेल मिलाहे। महला तीजा जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाओ ज्यो छुट्टड़ कर कर फिरै दुह चारण बदनाओ। नानक गुरमुख बख्शीऐ से सतगुर मेल मिलाओ। पौड़ी जो सेवै सत मुरार से भवजल तर गया जो बोले हर हर नाओ तिन जम छड गया। से दरगै पहदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर से वैसे ही पुरख जिन्ना हर तुद मया। गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पौ गया। श्लोक महला तीजा थाले विच तैं वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार जित खादे मन तृप्ती है पाई है मोख द्वार। एहो भोजन अलभ है संतो लब्बै गुरविचार एह मुदामणी क्यों विचों कढ़ीऐ सदा रखिए और तार। एह मुदामणी सतगुरु पाई गुरसिखा लद्दी पाल नानक जिस बजाए सो बुझ सी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा जो तोर मेले से मिल रहे सतगुर से उचित लाए आप विछोड़न से विछड़े दूजे पाए खुआए। नानक विण कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाए। पौड़ी बह सखिया जस गावै गावन हारिया
ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਓ ਨਿਤ ਹਰ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀਆ ਜਿਨੀ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆ ਹਰ ਨਾਉ ਤਿੰਨਾ ਹੋ ਵਾਰੀਆ ਗੁਰਮੁਖੀਆਂ ਹਰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰੀਆ ਹਉ ਬਲ ਜਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਹਾਰੀਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਸਭ ਭਰਮ ਦੇ ਨਿਤ ਜਗ ਤੋਟਾ ਸੰਸਾਰ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਹਉਮੈ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਣਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੈ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਨ ਉਸਤਤ ਹੋਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮੈ ਸਹਿਸਾ ਹੋਵੈ ਅੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਸੋਵੈ ਗਿਆਨੀ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤਿਆਂ ਬਲ ਜਾਓ ਪੌੜੀ ਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜੋ ਹਰਿ ਰਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਵੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਹਰ ਸਤਿਆ ਹਰ ਇੱਕੋ ਵਰਤੈ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਉਤਪਤਿਆ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਤਿਨ ਡਰ ਸਟ ਕਤਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਦੇਵੈ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ ਜਿਤ ਕੇ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਵਿੰਡਿਠਾ ਕਿਆਸਾ ਲਾਹੀਐ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀਐ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹਟ ਸੱਚ ਰਤਨੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਈ ਅਨ ਜੇ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਾਭ ਸਦਾ ਖਟਿਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਵੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਕਰਮ ਪਿਆਵਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਧਨ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਪੌੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵਈ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ ਕੂੜ ਆਰੀ ਰੱਜੈ ਕੂੜ ਜੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾਗ ਖਾਵਈ ਜਿਸਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਈ ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਰਾਦ ਕੂੜ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਵਈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇਖਾਂ ਚੌ ਚੱਕਿਆਂ ਚੌ ਵਾਇਆ ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ ਏਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਟਹਿ ਪਾਉ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਪੀ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਮਾਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਤਿੰਨ ਤਿਗ ਪਹਿਨਣ ਤਿਗ ਖਾਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਗੁਣ ਤੋਟਣ ਆਵਈ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੁਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਚੋਲੀ ਦੇਹ ਸਵਾਰੀ ਕੱਢ ਪੈਦੀ ਭਗਤ ਕਰ ਹਰ ਪਾਠ ਲੱਗਾ ਅਧਕਾਈ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬਿਦ ਭਾਂਤ ਕਰ ਕੋਈ ਬੂਜੈ ਬੂਜਣ ਹਾਰਾ ਅੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਕਰ ਸੋ ਬੂਜੈ ਹੋ ਵਿਵੇਕ ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਤ ਹਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋ ਪਉ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਿਨ ਕੋ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਸੇ ਕਿਆ ਕਥੈ ਗਿਆਨੈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਇਓ ਅੰਤ ਦੁਖ ਪਉਤਾ ਆਏ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੁਧ ਨਾ ਕਾਈ ਪਾਏ ਪੰਡਤ ਤਿਨ ਕੀ ਬਰਕਤੀ ਸਭ ਜਗਤ ਖਾਏ ਜੋ ਰਤੇ ਹਰ ਨਾਏ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹਿਆ ਹਰ ਸੋ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਪੰਡਤ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਬਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾ ਤਨ ਭੱਲੈ ਪਾਏ ਪੜ ਥੱਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਇਓ ਅੰਦਨ ਜਲਤ ਵਿਹਾਏ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਚੁੱਕਈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਹੋਣਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਉੱਠ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਜੋ ਹਰ ਦੱਸੇ ਮਿੱਤ ਤਿਸ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਰੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹਰ ਸੇਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਿਤ ਸੇਵ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਈ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਜਿਨ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੰਡਿਤ ਮਹਿਲ ਨਾ ਚੁੱਕ

अंतर तृष्णा भुख है मूर्ख भुखिया मोए गवार, सतगुर सेवया सुख पाया सच्चा शब्द विचार। अंदरों तृष्णा भुख गई सच्चा नाए प्यार, नानक नाम रते सहजे रजे जिन्ना हर रखिया अवतार। महला तीजा मन मुख हर नाम ना सेवया दुख लगा बहुता आए, अंतरा ज्ञान अंधेर है सुध ना काई पाए। मन अठ सहज ना बीजियो भुखा के अगे खाए, नाम निदान विसारिया दूजे लगा जाए। नानक गुरमुख मिले वडियाईया जे आपे मेल मिलाए पौड़ी, हर रसना हर जस गावे खरी सुहावनी। जो मंत्र मुख हर बोले सा हर पावनी, जो गुरमुख चखे साध सा तृप्तावनी। गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी, जिस होवे आप दयाल सा सतगुरु गुरु बुलावनी। श्लोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यो अंकस है अहरन ज्यो सिर दे, मन तन आगे रख कै उबी सेव करे। यो गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काले, नानक गुरमुख बुझी है जाय आपे नदर करे। महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते प्रवान, नानक कोले उधार अपना दरगह पावे मान। पौड़ी गुरमुख सखियां सिख गुरु में लाइया, एक सेवक गुर पास एक गुर कर लाइया। जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया, गुर सिखा एको प्यार गुरमिता पुता पाइया। गुर सतगुर बोलो सब गुर आख गुरु जीवाइया। श्लोक महला तीजा नानक नाम ना चेतनी अज्ञानी अंदले, अवरे कर्म कमाए जमदर बदे मारी है फिर विष्टा माहे पचाहे। महला तीजा नानक सतगुर सेवै अपना सेजन सच्चे परवान, हर कै नाए समाय रहे चुका अमन जान। पौड़ी तन संपै माया।

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवाया अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आप बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बिलोबन कौ माटा, ताकि हो बिलोबन हारी क्यों मेटे गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेतस चेरी। तू जम बपरी है हेरी, प्रभ करन करावन हारी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी जितलाई तितलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहां ही मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, और न पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़ी है क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया, पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए एक बस्ता गोचर लही है, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह कबीर।

हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोव सपानी, काया मांजस कौन गुना, जौ कट पीतर है मलना रहाओ, लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई, कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी सोरठ। एको ओंकार सतगुर प्रसाद, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे पूले कपट ना कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जह रहाओ, छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानी ना पावै, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा, संत हो मन पवने सुख बनया, किस जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंदलिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, यह माला अपनी लीजै, हाँ मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ, दोए शेर मांगो चूना, पाओ की ओ संग लूना, अध शेर मांगो दाले, मोको दोनों वक्त जिवाले, खाट मांगो चौपाई, सरहाना अवर तोलाई, ऊपर कौ मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा, मैं नाही कीता लबो, एक नाव तेरा मैं फबो, कह कबीर मन मानिया, मन मानिया तो हर जानिया, राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जब देखा तब गावा, तौ जन तीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ, जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी, मैं गुर प्रसादी जानी, रतन कमल कोठरी, चमकार बीजर तही, नेरे नाही दूर, निजात मैं रया भरपूर, जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहे समानिया, कर चौथा सोरठ, पाड़ पड़ोसन पूछ ले नामा, का पहचान शिवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दहाओ, मोको बेडी देहो बताई हो, रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राण आधारा रहाओ, बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जौ को शान शिवावे हो, लोग कुटुंब सबो ते तोरे, तो आपन बेडी आवे हो, ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब अंतर सब ठाई हो, गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो, बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांतु था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आ प्यो हो, सोरठ करती जा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाज।

तव हम भय है चकोरा। माधवे तुमन तोरो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यो तोर कवन स्यो जो रह रहाओ। जो तुम दीवरा तव हम बाती, जो तुम तीर्थ तव हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोरे अवर संग तोरी। जह जह जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकरे और ना देवा। तुमरे भजन कटे जम फासा, भगत हेत गावे रवदासा। जल की पीत पवन का थंबा, रगत बूंद का गारा। हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीवा। बंके बाल पाग सिर डेरी, एहो तन होए गो।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ ना जनई, लोग गठा वै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लो गंठ गंठ खरा बिगूचा, हम बिन गंठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पीखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

बहुते फेर पए कृपन कहो, अब किस कृपा कीजे। हो दयाल दर्शन देहो अपना, आपी ऐसी बस करी जय। पंडित नानक परम पट खूले, गुर प्रसादी जानिया, साची लिव लागी है पीतर, सतगुर स्यो मन मानिया। तनासरी महला चौथा, कर पहला चौपदे एको अंकार, सतगुर प्रसाद। जो हर सेवा संत भगत, तिनके सब पाप निवारी। हामी ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संग तुम जो प्यारी। हर गुण कह न सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत। कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ, जन्म जन्म के लागे विख मोरचा। लग संगत साध सवारी, जो कंचर बै संतर तायो, मल काटी करते उतारी।

हर हर अगमय अगाध बोध अपरंपर पुरख्या पारी, जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख परम पाओ भागी। अपनी सेवा आप कराई गुरमते अंतर जागी, हर कै नाम रता बैरागी। हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी, जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नानक कीरे तुम वड पुरख वडागी, तुमरी गत मित कह ना सके प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा, हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुरबानी। हर के संत सुनो जस कानी, हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब किलविख पाप लह जानी रहाओ, ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी। तिनकी तूर मंगे प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपयो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड उच्चे तिन हर जपयो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी। तनासरी महला चौथा, हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। गुर सिखमी चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ, हर के संत सुनो जन पाई। गुर सेवो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली। तनासरी महला चौथा, हर हर बूंद पय हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है। त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत अगाह हम लह ना सके अंत माती। तू पर पर अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती। हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती। नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा, कलयुग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपयो तरह तरा की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते का की रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जपयो मन हर हर
लग संगत साध जना।

पार्स चंदन हम काष्ट लोष्ट, हर संग हरी सतसंग पहे, हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नाम शे खट बोले मुख आगर, मेरा हर प्रभ इवना पतीने। जन नानक हरे हृदय सत्यावो, इव हर प्रभ मेरा पीने। तनाश्री महला चौथा, गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर, एव हर हर नाम ते आई। हर दर गै पावे फिर जन्म ना आवे, हर हर हर ज्योत समाई। जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी, हर जस ऊच सबना ते ऊपर। हर हर हर सेव छडाई रहाओ, हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी। तब हर स्यों प्रीत बने आई, बहु चिंत विसारी हर नाम ओर तारी। नानक हर पय है सिखाई, तनाश्री महला चौथा। हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ, हर भोजन पार उतारी। मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट, एव पण हर नाम मोरारी। मन जपिए हर जगदीश, मिल संगत साधु मीत। सदा आनंद होवे दिन राती, हर कीर्त कर बनवारी रहाओ। हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्यम, हर हर नाम जपियो गत ही पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी, हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी। तनाश्री महला चौथा, चौरासी सिद्ध बोत तीस कोट मुन जानो। सब चाहे हर जियो तेरो नाओ, गुर प्रसाद को विरला पावै, जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ। जप मन रामै नाम हर जस उत्तम काम, जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी। हम तिनकै सद बलिहारै जाऊं रहाओ। शरणागत प्रतपालक हर स्वामी, जो तुम देहो सोई हों पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजै, नानक हर सिमरन का है चाओ। तनाश्री महला चौथा, सेवक सिख पूजन सब आवै। सब गावै हर हरि उत्तम बानी, गाव्या सुनिया तिनका हर थाए पावै। जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी, बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ। हर दर तिन की उत्तम बात है संतो, हर कथा जिन जनो जानी रहाओ। आपे गुर चेला है आपे, आपे हर प्रभ चोज विडानी। जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी, अवर सब त्याग ओहा हर पानी। तनाश्री महला चौथा, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर। जां कै वस है काम तेना, सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े। ता सर्व सुख पाव है मेरे मना, जप मानो सतनाम सदा सतनाम। हालत पलत मुखी उज्जल होई है, नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ। जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी, वडपागी हर जपना। जन नानक कौ गुर एह मत दीनी, जप हर पवजल तरना। तनाश्री महला चौथा।

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानक जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुरबानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की कै ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगै न डोलै दृढ़ कर रहो पूर्ण होए तृपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु ना सूझी। बिखिया मह किन्ही तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रपै बिन हर कहां आगाई। रहा हो दिन दिन करत

कामवंत कामी बहुनारी परग्रे जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एहो तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बन आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरना साको उसता की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आए चिंता जाको दया करी मेरा ठाकर तिन गुरै कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्ब जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग्रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा

चंदन लेप होत देह कौ सुख गर्दप भस्म संगीत अमृत संग नाहे रुच आवत बिखै ठगौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी इस युग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो नानक एक प्रीत। तनासरी महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगे गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारे ओह विश्राम निद पाई। तुम करो दया।

प्रभ जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सब ता कहो, बिखम ना जाई लैन रहाओ। जाप ताप परम, जाप ताप परमन बसदा कर, उर्द ताप लै गैन, एह बिदन है पतियानो ठाकर, जो जोत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल कहार जास, तिन पायो जिस कर पैन, साध संग रंग प्रपेटे, नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावे, प्रभु मिलावे, हर हर नाम सुनावे, अस्त्र करे निचल एहु मनुआ, बहुण ना कतहु तावे। है कोई ऐसो हमरा मीत, सगल समग्री जियो हियो देओ, अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर तन पर की निंदा, इन स्यों प्रीत न लागे, संत संग संत संपाखन, हर कीर्तन मन जागे। गुण निदान दयाल पुरख प्रभ, सर्व सुख दयाला, मांगे दान नाम तेरो नानक, ज्यों माता बाल गोपाला। तनाश्री महा

सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस तां कै जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग सरणी पावन नाम ते आवन सह समावन संग रहाओ जन के चरण वसै मेरे ही अरे संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध नानक कै सुख एही। तनाश्री महला पंजवा जतन करै मान खुडहै कावै ओह अंतर जामी जानै पाप करे कर मुकर पावै पेख करै निर्बानै जानत दूर तुमै प्रभ नेर उत ताकै उत ते उत पेखै आवै लोभी फेर रहाओ। जब लग तुटै नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दी होय अपने जाके मस्त करमा नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मैं तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की मानै जो जो होग रहाओ। नाम तानो जिस जन कै पालै सेई पूरा सहा नाम ब्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा नेत्र पुनीत पए दर्श पेखे माथे परोर वाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तौ रखनहार दयाल सुंदर सुगण बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन ने ऊपर साल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनासरी महला पंजवा अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे महतारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला।

मंतन राम नाम हितकारे। सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छडाय लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कतहू जात। सतगुर पूरे कीनी दात। हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पही हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हर ना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मने सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी ना देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवां जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगयो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस शीज गया सब तंते प्रीतम स्य मन लागा रहाओ। जय जय पेखों तय नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवां जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवै जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरौ दिन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मदयंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना बेद पुकार कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझे।

आओ वड़े भाग पेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना ब्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपव नाम जपो हर रंगे पार तन दोख किश पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े त्रिसना यगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए अंधन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जन

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवण जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाई। बिन गुर भेटे मरियाई जाइए, रहाओ सो गुर करो जे साज दृढ़ावै। अकथ कथावै शब्द मिलावै, हर के लोग अवर नहीं कारा। साचो ठाकर साच प्यारा, तन मैं मनुआ।

आप दिखावे आपे देखे, हठ ना पतीजे ना बहु पेखे, घर पांडे जन अमृत पाया, प्रेम भगत ब्राह्मण पति आया। पड़ पड़ भूले चोटा खाहे, बहुत सियाण पे आवे जाहे, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए। पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पय उदासा, मन मिले सूचा क्यों होए, साच मिले पावे पत सोए।

दुर्योधन से पाई, बारह जो जन शत्र चल था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जन अपने ऊपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैर अग्न मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया ने लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देव बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिए पुंडरक मना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा, रहाओ।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारह सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तुही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दुक्रिस्त सुकृत थारो करमरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मध्य मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, बिसव का दीपक स्वामी, तांचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ तांचे बादवा। कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार दी, कर्म कर कपाल मफीट सरी। अमृत ससी तेन लक्ष्मी, कल्प तार शिखर सुनागर नदी चे नाथं। कर्म कर खार मफीटसरी, दादी ले लंका गाड़, ओ पाड़ी ले रावण बाण, साल बिसाल आण तोखी ले हरी। कर्म कर कशौटी मफीटसरी, पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन। ताचे मोहे जापी आले राम चे रामं, बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन। धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति मंग।

जो ब्रह्मंडे सोई पिंड जो खोजै सो पावे पीपा परणवै परम तत् है सतगुरु होए लिखावै तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो की ओ हमरा खुशी करे नित जीओ परियां शादन निकाया नाज मंगो सत सीका गौ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवै मंगी। जय श्री महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही अरे रतन नाम हर बसिया गुरहा तरियो मेरे माथा जन्म जन्म के किल बिख दुखी उतरे।

गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग ओ महाराम, आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लै लाहा, हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिले हरिओ महाराम, कर कीर्तो जस अगमाथा, खिन खिन राम नाम गावाहा, मोक उतार कृपा मिलिय गुरदाते, हर नानक भगत्यो महाराम, जय श्री महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा, खिन खिन भगत करै दिन राती, गुरमत भगत्यो महाराम, हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा, गुरमत पंच दूत वासे आवै, मंतन हरि ओ महाराम, नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा लैलाहा, दीन दयाल कृपा कर माधव,

जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आपे ही आपया वर्तै, आपे नाम्यो महाराम, आपे दीप लोप दीपाहा, आपे सतगुर समुद मथाहा, आपे मथ मत कढ़ाए, जप नाम रतने ओ

नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं साह सास आराधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक ना थी वै बाहरा नानक आसड़ी निबाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ ले जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी उदूत करण हर रमण संयोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त कीमना सक्का पाए सुख मिती हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी प्रवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त।

मेल लहो दयालो टह पै द्वारे रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारिया। भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया, तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया। कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया। सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है। चंदन चांदना सरद रुत मूल न मिटई काम, शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम। पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन, सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन। तोट न आवै मूल संचया नाम तानो, संत जना सो संग पाइय वड्डै पुन। आठ पहर हर त्याए हर जस नित सुन। सलोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन, दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया। पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप। पौड़ी जा प्रभ पय दयाल ना व्यापै माया, कोट अगा गए ना।

नारायण गुरदयाल समरथ गुर गुरु नानक पत तो उदारण पाओ जल बिखम असगाहो गुर बोथ तारियम नानक पूर करम सतगुर चरनी लग्या पौड़ी। धन धन गुरदेव जिस संघ हर जपे गुर कृपाल जप पए ताय अवगुण सब छपे। पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने आप दसे। गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंते को सुनियंते को वर्तनते को नर हर है। नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करै। हिक सेवी हिक समला हर एक सपै अरदास नाम वखर तन संचया नानक सच्ची रास पौड़ी। प्रभ दयाल बेअंत पूर्ण एक एहो सब किछ आपे आप दूजा कहां के हो। आप करो प्रभ दान आपे आप ले हो आवन जाना हुक्म सब निश्चल तुद थे हो। नानक मंगे दान कर कृपा नाम दे हो। जय श्री बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नाथ कछु ना जानो मन माया कै हाथ बिकानो रहाओ। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हम कहियत कल जो के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगारियो पल पल हर जीते अंतर पारियो। जत देखो तत दुख की राशी अजो ना पते आए निगम पहे साखी। गौतम नार उमा पत स्वामी शीस धरन सहस पग गामी। इन दूतन खल बद कर मारियो बड़ो निलाज अजू नहीं हारियो। कह रवदास कहां कैसे कीजै बिन रघुनाथ शरण कां की लीजै। एको अंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त वजूनी सह भंग गुरप्रसाद। राग टोडी महला चौथा कर पहला। हर बिन रह न सकै मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बहुर न पवजल फेरा रहाओ। मेरा हीर है लोच लगी प्रभ केरी हर नैनो हर प्रभ हेरा। सतगुर दयाल हर नाम दिरलाया हर पादर हर प्रभ केरा। हर रंगी हर नाम प्रभ पाया हर गोविंद हर प्रभ केरा। हर हृदय मंतन मीठा लागा मुख मस्तक भाग चंगेरा। लोभ विकार जिन्ना मन लागा हर विसरिया पुरख चंगेरा।

मुख मूड अज्ञानी कहिए तिन मस्तक भाग मंदेरा। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा। जन नानक नाम गुरु ते पाया तुर मस्तक भाग लखेरा। टोडी महला पंजवां कर पहला दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संत ने अवर ना काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जा को पाक स्वामी रहाओ। ऊच समाना ठाकर तेरो अवर ना काहू तानी ऐसो अमर मिलो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी निरपा होए रहे लेवे कै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवां हर बिसरत सदा खुवारी ताको तोखा कहां ब्यापै जां को ओढ़ तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी नव खंडन को राज कमावै अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जां को कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे को ओंकार सतगुर प्रसाद। तायो रे मंद दिसतायो माया मगन स्वाद लो मोहयो तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो एक मोहत नाहि मन लायो। बिगस्यो पेख रंग कसुंभ को पर गृह जोहन जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो नह सतपुरख मनायो। तावत कौ तावै बहु पाती जो तेली बल्द परमायो। नामदान इस नान ना कियो एक निमख ना कीर्त गायो। नाना झूठ लाए मन तोखियो नह बुझियो अपनायो। पारे उपकार ना कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो। पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वच्छल सुन आयो। नानक भाग परयो हर पाछ राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवां मानुख बिन बूझे बिरथा आया अनक सा सिंगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए किरपन श्रम कीनो एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया। कर आपरन सवारी सेजा कम न थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख बेख दुख पाया। सारो दिन समझूरी करता तो मुसले शराया खेद पयो बेगारी न्याई कर कै काम न आया। पयो अनुग्रह जा को प्रभ को तिस हृदय नाम वसाया। साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवां कृपा निद बसुर दै हरनीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागै प्रभ संग प्रीत। रहाओ दास तुम्हारे की पावो तूरा मस्तक ले ले लावो। महापत ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तहारो पावो। जो तू देहे तही एहो तृप्त या नकत हूं तावो। सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी सगले रण हो रही है। साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभ अपना लही है। सदा सदा हम शोहरे तुमरे तू प्रभ हमरो मीरा। नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा। टोडी महला पंजवां कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरा संग न चल मिले कृपा गुणगाम। रहाओ राज माला नेक भोग रस सगल तरवर की शाम ताए ताए बहुबिध कौतावै सगल निरार्थ काम।
बिन गोविंद अवर जे चाहौ दिसै सगल बात है खाम। कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावै विश्राम। टोडी महला पंजवां प्रभ जी को नाम मने साधारै। जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारै रहाओ। नाम जात नाम मेरी पत है नाम मेरा परिवार है। नाम सिखाई सदा मेरा संग हर नाम मोको निस्तार है। बिखै बिलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है। इष्ट मीत नाम नानको हर नाम मेरा भंडार है। टोडी महला पंजवा नीके गुण गाओ मिट ही रोग। मुखी उजल मन निर्मल होई है तेरो रह इहां उहां लोग रहाओ। चरण पखार करो गुर सेवा मने चरामो भोग। छोड़ आपत बाद हंकारा मान सोई जो होग। संत टहल सोई है लागा जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा अवर ना करन है जोग। टोडी महला पंजवा सतगुर आयो शरण तुहारी। मिले सुख नाम हर सोभा चिंता लाए हमारी रहाओ। अवर ना सूजै दूजी ठहर हार परयो तो द्वारी। लेखा छोड़या लेखा छूटै हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख सिंध सदा मेहरवाना सब ना दे आधारी। नानक दास संत पाछै परयो राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवां रसना गुण गोपाल निध गायण। सांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायण रहाओ। जो मांगै सोई सोई पावै सेव हर के चरण रसायण। जन्म मरण दोहूं ते छूटै पव जल जगत तरायण। खोजत खोज तत् बिचारियो दास गोविंद परायण। अविनाशी खेम चाहै जे नानक सदा सिमर नारायण। टोडी

काल जाल जम जोहे न साके सच का पंथा थाट्यो खात खर्चत किश निखुटत नाही राम रतन तन खाट्यो पसमा पूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखे लोक सुबाया टोडी महला पंजवा किरपनो तन मन किलवख परे साध संग भजन कर स्वामी ठाकन को एक हरे रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस आराधे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहै ओए ऊहां ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो शरण परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काढ़ कुठार पित बात हंता औखद हर को नाओ रहाओ तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास ताको बिगड़ न को लागे जा की प्रभ आगे अरदास संत प्रसाद वैद नारायण करण कारण प्रभ एक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप तार अनुग्रह पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ जिसके से फिर तिन ही संभाले बिन से शोक संताप हाथ दे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ नानक सरन परे दुख पंजन जा कावड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परे दरबारे कोट पराद खंडन के दाते तुझबन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाई है माया रच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा कर तीजा चौपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद हां हां लपट्यो रे मूड़े कछु ना थोरी तेरो नहीं सोजानी मोरी रहाओ आपन राम ना चीनो खिनुआ जो पराई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहू चित लायो सो संचयो जित भूख तसायो अमृत नाम तोसा नहीं पायो काम क्रोध

वड़े भाग गुर अपना पायो, गुरमुखो हर नाम दृढ़ायो। हर हर जाप ताप व्रत नेमा, हर हर त्याय कुशल सब खेमा। आचार व्यवहार जात हर गुनिया, महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकर पाया, सब किश तिसके गृह मैं आया। टोडी महला पंजवा, कर चौथा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर नी हो ना होए रहाओ। हाँ टूडेंदी दर्शन कारण, बीथी बीथी पेखा गुरमिल परम गवाया है। एह बुद्ध पाई मैं साधु कन्ना, लेख लिखियो तुर माथ। एह बिद नानक हर नैन अलोए, टोडी महला पंजवा। गर्भ गहलड़ो मूड़ो हियो रे, हियो महराज री मायो। डीहर न्याई मोयफा क्यों रे रहाओ। कणो कणो कणो सद लोड़ै, बिन लहना कैठ पायो रे। महराज रो गाथ बाहू स्यो लुबड़ो, नेह पागड़ो पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्राश्त मिट्यो रे। जा को लहनो महराज री गठड़ियो, जन नानक गर्भासना पौड़ियो रे। टोडी महला पंजवा, कर पंजवा दो पदे एक ओंकार। सतगुर प्रसाद ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दुख अर अहंग रोग एह तंते सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर शोर बिखिया ते, गुर को शब्द मेरा हीर दीन। रूप अनुरूप मेरो कश ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोय हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाठ बीच खोए, आनंद चिता हर खे पतीन। तिस ही को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तिस ही को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत। एही कर्म धर्म जप एही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरै, देखन कौ दर्शन प्रभ नीत। बाट घाट तोसा संग मोरै, मन अपने कौ मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पय मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण। बिसर नहीं निमख ही अरे ते, अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ। खोवो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुड़ सुजान। कोट राज नाम तन मेरा, अमृत दृष्ट धारो प्रमान। आठ पहर रसना गुण गावे, जस पूरा गावे समर्थ कान। तेरी शरण जियन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। टोडी महला पंजवा, प्रभ तेरे पग की तूर। दीन दयाल प्रीतम मन मोहन, कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ। दै जसरव रहया जस तुमरा, अंतर जामी सदा हजूर। जो तुमरा जस गावे करते, सेजन कबो न मरते चूर। तंद बंद बिनसे माया के, साधु संगत मिटे बिसूर। सुख संपत भोग इस जी के, बिन हर नानक जाने कूर। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्यास। एक खिन रह ना सको बिन प्रीतम, दर्शन देखन कौ धारी मन आस। रहाओ सिमरो नाम निरंजन करते, मन तनते सब किल विखनास। पूरन पार ब्रह्म सुखदाते, अबनासी बिमल जा को जास।
संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजियो कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवां हर हर पद पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतर सब बेता रिद दास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी करम भूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पहे बिस्मादा यान न बियो दूसर लावन रसना सिमर सिमर जस जीवा नानक दास सदा बल जावन टोडी महला पंजवां माई माया शाल त्रिन की अगन में की छाया गोविंद भजन बिन हड़का जाल रहाओ छोड़ सियान बहु चितराई दोए कर जोड़ साध मग चल सिमर स्वामी अंतर जामी मानुख देह का एहो उत्तम फल बेद बखयान करत साधु जान भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भय माल टोडी महला पंजवां माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवै परमेसर कोट फला दर्शन गुर डीठे रहाओ गुण गावते अच्युत अविनासी काम क्रोध बिनसे मद टीठे अस्त्र पए साच रंग राते जन्म मरण बाहुर नहीं पीठे बिन हर भजन रंग रस जेते संत दयाल जाने सब झूठे नाम रतन पायो जन नानक नाम बेहून चले सब मूठे टोडी महला पंजवां साध संग हर हर नाम चितारा सहजानंद होवे दिन राती अंकर भलो हमारा रहाओ गुर पूरा पेट्यो वड भागी जां को अंत ना पारा वारा कर गह काड लियो जन अपना बिकसागर संसारा जन्म मरण काटे गुरबचनी बहुना संकट द्वारा नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कारा टोडी महला पंजवां माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भोगवै हर सिमरत बिन सह सब दुख रहाओ कोट जन्म के किल बिख नास सिमरत पावन तन मन सुख देख सरूप पूर्ण पई आसा दर्शन पेट उत्तरी भुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना तुख टोडी महला पंजवां हर हर चरण हृदय और तारे सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीर्त तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकर अगम्या पारे जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बाहुर कश ना बिचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मझारे टोडी महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमाई उर्ज कनक कामनी के रस नह कीर्त प्रभ गाई रहाओ जग झूठे कहो साच जान कै ता स्यों रुच उपजाई दीन बंद सिमर्यो ने कबहू होत जो संग सहाई मगन रहो माया मैं निस्दन छुट्टी न मन की काई कह नानक अब नाहे अनत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगता की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरै खजूर कायें रे बकबाद लायो जिन हर पायो तिनै छपायो रहाओ पंडित होए कै बेद बखाने मूर्ख नाम दियो रा मैं जाने
कौन को कलंक रहयो राम नाम लेत ही पतत पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को परतग्या आई एकादशी व्रत रह काहे को तीर्थ जाई। पणत नाम देव सुकृत सुमत भय गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन छंदे खेल अच्छा रहाओ कुंभार के कर हांडी अच्छा राजा के कर सांडी गो। बामन के कर रांडी अच्छा रांडी सांडी हांडी गो। बाणिये के कर हींग अच्छा पैसर माथे सींग गो। देवल मध्य लिंग अच्छा लिंग सींग हींग गो। तेली के कर तेल अच्छा जंगल मध्य बेल गो। माली के कर केल अच्छा केल बेल तेल गो। संता मध्य गोविंद अच्छा गोकल मध्य श्याम गो। नामे मध्य राम अच्छा राम श्याम गोविंद गो। राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सुन माने कथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे। पज गुरमत हर राम राम रहाओ। नाना ख्यान पुराण जासी उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस ते आयो। नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत्यो पाम। नानक कृपा करी हर जन को ते संत भले हर राम। बैराड़ी महला चौथा मन मेर संत जना जस गायो। हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान देवायो रहाओ। तिस जन को मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो। तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो। खिन किंचित कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जस त्यायो। जन नानक कौ हर भेटे स्वामी दुख हम मैं रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे। जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ। जो किश करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे। हर आपे ही मत देवे स्वामी हर आपे बोल बुलावे। हर आपे पंच तत् विस्थारा वि धातु पंच आप पावे। जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे चगर चुकावे। बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोट कुटंतर के पाप सब खोवे। हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपौ निर्वैर निरंकारा। हर निकट बस्त कश नजर ना आवे हर लादा गुर विचारा। हर आपे साहु सराफ रतना हीरा हर आप की आपा सारा। नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहु सच्चा बणजारा। बैराड़ी महला चौथा जप मानो हर निरंजन निरंकारा। सदा सदा हर सत्याई है सुखदाता जाका अंत ना पारा वारा रहाओ। अगन कुंट मैं उर्दिव लागा हर रख है उधर मजारा। सो वैसा हर सेवो मेरे मानो हर अंत छिडावन हारा। जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा। हर कृपा ते पाईए हर जप नानक नाम आधारा। बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याए। जो इच्छा सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर स्यों प्रीत लगाए। बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन में बिसर सब जाए।
ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਰਬ ਕਲ ਪੂਰਾ, ਕਿਛ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਹਰ ਜੀਉ, ਪਾਵੈ ਤਵੈ ਛੜਾਏ। ਰਾਗ ਬੈਰਾੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਇਓ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਤ ਪਾਈ। ਰਾਗ ਤਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਯਕ ਅਰਜ ਗੁਪਤਮ ਪੇਸਤੋ, ਦਰ ਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ। ਹੱਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ, ਬੇਐਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਦੁਨੀਆਂ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ। ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਅਜਰਾਈਲ ਗਿਰਫਤੈ, ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ ਰਹਾਓ। ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ, ਕਸ ਨੇਸ ਦਸ ਤੰਗੀਰ। ਆਖਰ ਬਿਅਫਤਮ ਕਸ ਨਾ ਦਾਰਦ, ਚੂ ਸਵਦ ਤਕਬੀਰ। ਸਭ ਰੋਜ ਗਸਤਮ ਦਰ ਹਵਾ, ਕਰ ਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ। ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ, ਮਮ ਈ ਚਿਨੀ ਅਹਵਾਲ। ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੋ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ, ਬੇ ਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾ ਖਾਕ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ

जो तुद सेवै तिन भौ दुख नाहे, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए। जिन जपया तिस कौ बलिहार, तिस कै संग तरै संसार। कहो ना

अंतर वसै ना बाहर जाए, अमृत छोट काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, बंधन बांधया सब जग पवै। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। सुही महला पहला, कर सेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उज्जल कहा चिलकना। कोटम कर लड़ी मस, तोतिया झूठ ना उतरै जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं, चलद्या नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया, पासो चितवियां हां, टठियां कम ना आवनी विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े, तीर्थ मंज वसन, कुटकुट जियां खावणे बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख भुलन, से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत, अखी लोड़ी ना लहा हों चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाईयां अवर सियाण पकित, नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सुही महला पहला, जप तप का बंद बेड़ला, जित लंघै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा, रत्ता मेरा चोला साध रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई, जे गुण हो वै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई, आवा गौण निवारिया है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया सीता है चोला, गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कहे सहेलियो सौ खरा प्यारा, हम सह केरिया दासियां साचा खसम हमारा। सुही महला पहला, जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी, सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी, इतना मिलिया गुर आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवै दिखिया, चल ऐ सतगुर पाए पवै ना पीखिया। जा को महला हजूर दूजे नवै किस, दर दरवाणी नाहे मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस, कल्ले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे उसारे साज जाने सब सोए, नाओ नानक बख्शीस नदरी कर्म होए। सूही महला पहला, पांडा हच्छा सोए जोत स्पाव सी। पांडा आत्मलीन तोता हच्छा ना होए सी, गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी। ये द्वारे तोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी। मत को जाने जाए अगे पाए सी, जेहे कर्म कमाए तेहा होए सी। अमृत हर का नाव आप वरताए सी। चलिया पत सिंह जन्म सवार, वाजा वाए सी मानस क्या विचारा, त्यो लोक सुनाए सी। नानक आप निहाल सब कुल तार सी।

तेरा सदड़ा सुनी जय भाई जेको बह अलाए रहाओ। जैसा बीजे सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगे पुछ ना हो वही जे सणनी सण जाए। तैसो जैसा कांडी है जैसी कार कमाए जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए। एहो तन वेची बै करी जे को ले विकाए नानक कम ना आवई जतन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जोग ना खिंथा जोग ना डंडा जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूंड मुंडाया जोग ना सिंघी वाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है गल्ली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई रहाओ। जोग ना बाहर मड़ी मसानी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना दे संतर पवे जोग ना तीर्थ नाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सदगुर भेटै ता सहसा टूटै तावत वर्ज रहाई है निजर चरै सहे तुन लागै।

मेरे मानो हर राम नाम कर रंग, गुर तुठे हर उपदेशया हर पेटिया राव निसंग रहाओ। मुंद एआणी मन मुखी फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया सब लाथे किलवख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ सत संगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा हर हर करै नित कपट कुमावै, हिरदा शुद्ध ना होई आन दिन कर्म करै बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई, कोरै रंग कदे ना चढ़ै जे लोचै सब कोई रहाओ। जप तप संयम वर्त करे पूजा मन।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत किसन उतरिया घर जिस जाए। हर किया कथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ। रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया चार वर्ण पय पगयाए, नाम दे प्रीत लगी हर सेती। लोक शिपा कह बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे। हर नाम देव लिया मुख लाए, जितने भगत हर सेवका। मुख 68 तीर्थ तिन तिलक कढाए, जन नानक तिन को वंदन परसे। जे कृपा करे हर राए, सूही महला चौथा। तिनी अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा। तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर। जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ। तुर भगत जना को बख्सिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, ते सहलत पलत मोहकारा। से भगत से सेवका, जिन्ना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा ते हर पाई है, सिर निंदक कै पवे इशारा। जिस घर विरती सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा। चहो पीड़ी आद जुगाद, बखीली किने ना पायो। हर सेवक पाए निस्तारा, सूही महला चौथा। जिथे हर आराधिया तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसै। होरत बिदलया ना जाई, हर तन संचिया पाई। जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ। सत संगति संग हर तन खटी है, होरत है होरत उपाय। हर तन कित ना पाई, हर रतन का वापारिया। हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये। वाके हर तन लया ना जाई, हर तन रतन जिवे हर माणक। हर तन नाल अमृत वे लैवत, हर भक्ति हर लिवलाई। हर तन अमृत वे लैवत का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही। हालत पलत हर तने की, भगता को मिली वडियाई। हर तन निरपौ सदा सदा अस्त्र है साचा। एहो हर तन अग्नि तस्कर पानी है, जमदूत किसे का गवाया ना जाई। हर तन का ओचक्का नेड़ ना आवई, जम जा गाती डंड ना लगाई। सागती पाप करके बिखिया तन संचिया, तिन्ना एक विख नाल ना जाई। हलते विच सागत दुहेले पए, हथों छुड़क गया। अगे पलत सागत हर दरगै टोई ना पाई। इस हर तन का साहो हर आप है संतो, जिसनो दे सो हर तन लद चलाई। इस हर तन का तोटा कदे ना आवई, जन नानक कौ गुर सोजी पाई। सुही महला चौथा, जिसनो हर सो प्रसन्न होए, सो हर गुणा रवै। सो भगत सो परवान, तिसकी महिमा क्या वर्णी है। जिसके हृदय वसया हर पुरख भगवान। गोविंद गुण गाइए जियो, लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ। सो सतगुरु सा सेवा, सतगुर की सफल है। जिसते पाइए परम निदान, जो दूजे पाए सागत कामना। अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे, सोने फल सब अगे।

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावै त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है।

तू करता सब किछ आपे जाना, क्या तुद पै आख सुनाई है, बुरा भला तू सब के सूझै, जिहा को करे तिहा को पाई है, मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाना, बुरा भला तू सब के सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड्याई तू है जाणै, सब तुदनो नित त्याए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा, जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सबरो गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित परम पद पाए, मेरे राम हर जन आरोग पए, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हम मैं रोग गए रहाओ, ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी, विचहु मैं कार कमाई, जिन किए तिसै न चेतै बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई, हौ मैं रोग सब जगत ब्यापिया, तिन कहो जन मरण दुख भारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन कहो हौ बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाणै, ताका रूपया पारो, नानक आपे वेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म बिचारो, सुही महला चौथा, कीता करना सरबर जाई, किश कीचै जे कर सकी, अपना कीता किछु ना होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखियै, मेरे हर जियो सब को तेरै वस, असा जोर नाही जे किश कर हम साकै, ज्यों भावै तिवें बख्स रहाओ, सब जियो पिंड दिया तुद आपे, तुद आपे कर लाया, जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै, जेहा तू तुर लिख पाया, पंच तत् कर तुद सिरठ सब साजी, कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै, एक ना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मन मुख करै से रोवै, हर की वड्याई हौ आख ना साका, हौ मूर्ख मुग्ध नीचाण, जन नानक कहो हर बख्श लै, मेरे स्वामी शरणागत पया अजान, राग सूही महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, बाजी गर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एक अंकारा, कवन रूप दृष्टियो बिनसायो, कतै गयो ओ काते आयो रहाओ, जल ते उठे अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बहुरंगा, बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते कंकारा, सहस घटा मैं एक आकाश, घट फूटे ते ओही प्रगास, परम लोभ मोह माया विकार, परम छूटे ते एकंकार, ओह अबनासी बिन सत नाही, ना को आवै ना को जाही, गुर पूरै हौ मैं मल धोई, कहो नानक मेरी परम गत होई, सुही महला पंजवां, कीता लोड़ै।

जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियारै कछु ना पाइयै, साच लगै ता हम जाइयै। जिसनो लाए लय सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। दुरमत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दुइ कर जोड़ करो अरदास, तुद भावै ता आणै रास। कर कृपा अपनी भगती लाए, जन नानक प्रभ सदा ते आए। सुही महला पंजवां, तन सोहागन जो प्रभु पछानै। मानै हुक्म तजै अभमानै, प्रेसे राती रलिया मानै। सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तजला जलुकानी। रहाओ सखी सहेली कौ समझावै, सोई कमावै जो प्रभ पावै। सा सुहागण अंक समावै, गर्भ घेली महल ना पावै। फिर पछतावै जब रहन विहावै, कर्महीन मनमुख दुख पावै। बिना करीजे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहा भरपूर। जन नानक गावै देखा दूर, सुही महला पंजवां। गृह वस गुर की ना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी पिर कौ लोड़ी। कवन कहां गुण कंत प्यारे, सुगण स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिंगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम तम बोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे। जा पिर कर आवै, गुण कामण कर कंत।

प्रगटया सूर जोत उजियारा, सेज विशाई सरदया पारा, नव रंग लाल सेज राम ने आया, जन नानक पिर तन मिर सुख पाया। सूही महला पंजवा, उम क्यों हियो मिलन प्रभताई, खोजत चरियो देखो प्रे जाई। सुनत संदे सरो प्रे गृह सेज विशाई, भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई। किन बिद हियरो धीर निमानो, मिल साजन तुझ कुर्बानो रहाओ। एका सेज विशी तन कंता, तन सूती पिर सदजा गंता, पियो मदरो तन मतवंता, तन जागे जे पिर बोलंता। पही निरासी बहुत दिन लागे, देह दिसंतर मैं सगले चागे। खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे, होए कृपाल प्रभ मिले इस पागे। भयो कृपाल सतसंग मिलाया, बूझी तप्त करै पिर पाया। सगल सिंगार हुण मुझे सुहाया, कहो नानक गुर परम चुकाया। जै देखा तै पिर है भाई, खोलियो कपाट ता मन ठहराई। रहाओ दूजा सूही महला पंजवा, क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोह दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावाओ क्या कहरी जावाओ बिदगित पावाओ दरसारे मित नहीं पाई।

साच नाम की अमृत वर्खा गोहज कथा ए गुरते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही महला पंजवा जा कै दर्श पाप कोट उतारे भेटत संग एहो पव जल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे रहाओ जा का शब्द सुनत सुख सारे जा की टहल जमदूत बिदारे जा की तीरक इस मने सुधारे जा कै सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे शरण नानक तिन सद बलिहारे सूही महला पंजवा रहन ना पावै सुर नर देवा ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ बाद सहा सहा वापारी मरना जो दिसै सो कल खरना कूड़े मोहे लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना किरपा निधान नानक कौ करहो दात नाम तेरा जपी दिन रात सूही महला पंजवा घट घट।

एहो सुपना सोवत नहीं जानै, अचेत व्यवस्था मैं लपटानै रहाओ। महा मोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊट सिधारा, ऊते ऊच ताका दरबारा, कई जंत बिनाहे उपारा। दूसर होवा ना को होई, जप नानक प्रभ एको सोई, सूही महला पंजवा, सिमर सिमर ताका हो जीवा। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, सोहर मेरा अंतर जामी, भगत जना कै संग स्वामी रहाओ। सुन सुन अमृत नाम ते आवा, आठ पहर तेरे गुण गावा, पेख पेख लीला मन आनंदा, गुणिया पार प्रभ परमानंदा। जा कै सिमरन कछ पौ ना ब्यापै, सदा सदा नानक हर जापै। सूही महला पंजवा, गुर कै बचन हृदय ध्यान धारी, रसना जाप जपो बनवारी। सफल मूर्त दर्शन बलिहारी, चरण कमल मन प्राण आधारी रहाओ। साध संग जन मरण निवारी, अमृत कथा सुन करने आधारी। काम क्रोध लोभ मोह तजारी, दृढ़ नाम दान इस नान सुचारी। कहो नानक कहो तत् बिचारी, राम नाम जप पार उतारी। सूही महला पंजवा, लोभ मोहे मगने अपराधी, करनहार की सेवना सादी। पतत पावन प्रभ नाम तुम्हारे, राख लियो मोहे निर्गुणियारे रहाओ। तू दाता प्रभ अंतर जामी, काची दे मानुखिया अभिमानी। स्वाद बाद ईरख मद माया, इन संग लाग रतन जन्म गवाया। दुख भंजन जग जीवन हर राया, सगल त्याग नानक सरनाया। सुही महला पंजवा, पेखत चाखत कहियत अंधा, सुनियत सुनिए नाही। निकट वस्त कौ जाने दूरे, पापी पाप कमाही। सो किश कर जित छुटै परानी, हर हर नाम जप अमृत बानी रहाओ। घोर महल सदा रंग राता, संग तुम्हारा कछु न जाता। रखै पोचार माटी का भांडा, अत कुचील मिलै जम डांडा। काम क्रोध लोभ मोहे बादा, महागर्त मैं निगरत जाता। नानक की अरदास सुनी जै, डूबत पाहन प्रभ मेरे लीजै। सूही महला पंजवा, जीवत मरै बुझै प्रभ सोए, तिस जन कर्म प्राप्त होए। सुन साजन इउं दुत्तर तरियै, मिल साधु हर नाम उचरियै रहाओ। एक बिना दूजा नहीं जानै, घटघट अंतर पार ब्रह्म पिछानै। जो किछ करै सोई भल मानै, आदि अंत की कीमत जानै। कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कै हृदय वसै मुरारी। सूही महला पंजवा, गुर परमेसर।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम्या गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सुही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट ना आवे, खात खर्चत सुख अंध विहावे। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जपहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्स तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, रहाओ साध संगत स्यों प्रीत बन आई। पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप। जाल न सके तीने ताप, निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे। नानक मांगे दान प्यारे। सुही महला पंजवा, से संजोग करो।

जिस कृपा करै बसै तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखन संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिन से, गुर पूरे मिल पाप तजायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, घर का काज ना जा।

दर्शन कह लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंत तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवे दुत्तर माई। दिन रहन अपना किया पाई, किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, कर चौथा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हर, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोख आए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलो बाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ, आप करे कराए। सास सास सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तन, तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगल ते, जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तजा मान सरणी परो, हर गुण निध पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक को प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवां, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी, ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवां, कर पंजवां पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। जप मन गोबिंद एक है, अवर नहीं को लेख है। संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया। पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोट वरिया। निज मंदिर प्रिया, तहां आनंद करिया। नै मरिया नै जरिया, कीर्तन जुरिया। बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया, अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया, बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवां, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवां, तौ मैं आया सरनी आया। भरोसै आया कृपा आया, ज्यो पावै त्यों राखो स्वामी। मार्ग गुरे पठाया रहाओ। महादुत्तर माया, जैसे पवन चुलाया। सुन सुन ही डराया, करो त्रमराया। ग्रह अंध कु पाया, पावक सगराया। गही ओट साधाया, नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया। राग सुही महला पंजवां, कर सेवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर पास, बेनंतियां मिलै नाम आधारा। तुठा सच्चा पात साहो, ताप गया संसारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू।
ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਰਹਾਉ। ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪਿਆ ਗਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਰਾਗ ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਨਾਏ, ਜਿਸਨੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ ਸਾਈ ਭਗਤ।

मेरे राम हौसो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरै बिल लाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवदूता तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके बिपूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक, ता मन तन हर हर त्याया। सुही महला पंजवां, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। संत हो सागर पार उतरिय, जे को बचन कमावै संतन का। सो गुर प्रसादी तरिय रहाओ, कोट तीर्थ मजन इस नाना, इस कल में मैल भरी जै। साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस, उपदेश चौं वर्ण कौ सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं, कड़कट नानक माजा। सूही महला पंजवां, जो किश करै सोई प्रमानै, ओए राम नाम रंग राते तिन की शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पराते। मेरे राम हर संतां जेवड ना कोई, भगतां बने आई प्रभ अपने स्यों, जल थल मैयल सोई रहाओ। कोट अपराधी संत संग उदरै, जमता कै नेड़ ना आवै। जन्म जन्म का विछड़िया होवै, तन हर स्यों आन मिलावै। माया मोह परम पौ काटै, संत सरण जो आवै। जिहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावै। जन की महिमा केतक वर्णो, जो प्रभु अपने पाणे। कहो नानक जिन सतगुर भेटिया, से सब ते पए निकाणे।

आस चुकाई। मेरे राम राए तुद चित आया उबरे, तेरी टेक परभाषा तुमरा, जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ। अंध कूब ते काल लिए तुम आप है कृपाला, सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छाए, अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम गया पै मोह बिनासे, मिटिया सगल विसूरा, नानक दया करी सुखदाता पेटिया सदगुर पूरा। सूही महला पंजवा, जब कछ ना सी ओ तब क्या करता, कवन कर्म कर आया, अपना खेल आप कर देखै, ठाकुर रचन रचाया। मेरे राम राए मुझते कछु न होई, आपे करता आप कराए, सर्व निरंतर सोई रहाओ। गणती गणी न छूटै कतहूं, काची दे आणी, कृपा करो प्रभ करण हारे, तेरी बख्श निराली। जी जंत सब तेरे कीते, घट घट तुही ते आई है, तेरी गतमित तू है जाने, कुदरत कीम ना पाई है। निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी, कर्म धर्म नहीं जाना, दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। सूही महला पंजवा, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर तन हर नामा, प्रवान गणी से ही एह आए, सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कह हम बल जाई, केसा का

तेरी बख्श ना मेटे कोई सतगुर का दिलासा, नाम ते आए न सुख फल पाए न आठ पहरे आराधा, तेरी शरण तेरे प्रवास है पंच दुष्ट लै साद, ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी, सूही महला पंजवां सगल त्याग गुर सरणी आया, रखो रख नहारे जे तू लावे तित हम लागे, क्या ए जंत विचारे।

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

तिन मुख नाम न उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल न बुझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो करता चेतना आवई फिर लगे दुख जियो सुख दुख।

ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तमाए गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशन सेवड़ भागी जे।

नरक सुर्ग अवतार माया तंदया। सोदत सोदत सोद सोद सोदत सोदत सोद तत विचारिया, नाम बिना सुख नाहें सर पर हारिया। आवै जाय अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी परम ते। जिन कौ भय दयाल तिन साधु संग पया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लया। खोजै कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा ते सहे। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला, कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन कुचजी अमावन डोसड़े, हाँ क्यों सौ रावण जाओ जियो। एक दू एक चिड़ंदियां, कौन जाने मेरा नाओ जियो। जिनी सखी सौरावया से अंबी शावड़ी, यह जियो। से गुण मंजना यावनी, हो कै जी दोस्त रेव जियो। क्या गुण तेरे विथरा, हो क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो। एक तटोल ना अंबड़ा, हो सतगुर बाणा ते रह जाओ जियो। सोइना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो, से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो, हौ एनी टोली पुली अस तिस्कंत ना बैठी पास जियो। अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो, सातन चली साहोरै क्या मोह देसी अगे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वटड़ यास जियो, तै सह नालो मुती अस दुखां कू तरियास जियो। तुद गुण मैं सब अवगणा, एक नानक की अरदास जियो। सवरा तीसो हागणी मैं डोहागण काई रात जियो। सुही महला पहला सुचजी, जा तू ता मैं सब को, तू साहिब मेरी राह जियो। तुद अंतर हों सुख वसा, तू मंत्र साबाह जियो। पाणे तख्त वडाइया पाणे पीखो दास जियो, पाणे थल सिर सर्व है कमल फुल आकाश जियो। पाणे पवजल लंगी है पाणे मंज परिया जियो, पाणे सो सहो रंगला सिफतरता गुणदास जियो। पाणे सहु पीहावला यावन जान मुइया जियो, तू सो अगमा तोलवा हों कह कह टह पैया जियो। क्या मांगो क्या कह सुनी, मैं दर्शन पूख प्यास जियो। गुर शब्दी सह पाया सच नानक की अरदास जियो। सूही महला पंजवा गुणवंती, जो दिसे गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस

राम नाम प्यारे सब को लोधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत समाणी। हर हर एको पाया हर प्रभु, नानक कृपा तारे सोहिल लाहर राम नाम गुरसबदी विचारे। हम नीवी प्रभ अतूचा, क्यों कर मिलिया जाए राम, गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुभाए। राम मेरे शब्द सुभाए आप गवाए, रंग सों रलिया माने से सुखाली जा प्रभ पाया, हर हर नाम सुमाने। नानक सोहागण सा वडभागी, जे चलै सतगुर पाए। हम नीवी प्रभ अत ऊचा, क्यों कर मिलिया जाए राम। घट घटे सबना विच एको, एको राम पतारो राम। एक ना प्रभ दूर वसै, एक ना मन आधारो राम। एक ना मन आधारो सृजन हारो, वडभागी गुर पाया। घट घट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया। सहजे अंध हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो। घट घटे सबना विच एको, एको राम पतारो राम। गुर सेवन सतगुर दाता, हर हर नाम समाया राम। हर धूड़ देवो मैं पूरे गुर की, हम पापी मुत कराया राम। पापी मुत कराए आप गवाए, नहीं कर पाया वासा। बबेक बुद्धि सुख रैन विहानी, गुरमत नाम प्रगासा। हर हर आनंद भया दिन राती, नानक हर मीठ लगाए। गुर सेवन सतगुर दाता, हर हर नाम समाए। राग सूही महला चौथा, शंत कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख में लाए, अवगण विकणा गुण रवा बलराम जियो। हर हर नाम ते आए, गुरबाणी नित नित चवा बलराम जियो। गुरबाणी सद मीठी लागी, पाप विकार गवाया। हों मैं रोग गया पौ पागा, सहजे सहज मिलाया। काया सेज गुर शब्द सुखाली, ज्ञान तत् कर भोगो। अंदन सुख माणे नित रलिया, नानक तुर संजोगो। सत संतोख कर पाओ, कुड़म कुड़म आई आया बलराम जियो। संत जना कर मेल, गुरबाणी गावाईया बलराम जियो। बाणी गुर गाई परम गत पाई, पंच मिले सोहाया। गया क्रोध ममता तन नाठी, पाखंड परम गवाया। हम मैं पीर गई सुख पाया, आरोगत पए शरीरा। गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा। मन मुख विछड़ी दूर, महल ना पाए। बल गई बलराम जियो, अंतर ममता कूर। कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो। कूड़ कपट कमावै महा दुख पावै, बिन सतगुर मग ना पाया। उजड़ पंथ प्रमै गावारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभ दाता, सतगुर पुरख मिलाए। जन्म जन्म के विछड़े जन मेले, नानक सह सुवाए। आया लगन गणाए, हिरदय तनो माहिया बलराम जियो। पंडित पांदे आन, पति बहवाचाइया बलराम जियो। पति वाचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कर आए। गुणी ज्ञानी बहमता पकाया, फेरे तत दिवाए। वर पाया पुरख्या गामा गोचर, सद नवतन बाल सखाई। नानक कृपा करके मेले, विछड़ कदे ना जाई। सूही महला चौथा, हर पहलड़ी ला परवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ाओ, पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम ते आवो, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूराया राधो, सब किल विख पाप गवाया। सहजानंद हो।

निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होय दासा जीवित मरी है भौ जल तरी है जे थी वह कर्म लिखिया सा गुर से बीजे अमृत पीजे जिसला वैसे त्यानो नानक शरण पया हरिद्वार हौ बलबल सत कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो न माना सत कुरबाना सगलाया मिटाई है ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पाया विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसकै बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसकै बलराम जियो बाबल मेरा वड समर्था करण कारण प्रभारा जिस मृत दुख कोई ना लागे पौजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्त कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदन मंतन पीवा हरे आपे लय मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जी हो जिसनो तेरी टेक सो सदा सजी वही बलराम जी हो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजनहारा जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रहन आस तुम्हारी सफल दर्स भेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जी ओ सतगुर मिलिया दयाल गुण अविनाशी गाया बलराम जी ओ गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जमिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिनासे सगल नानक प्रपुरख करने हारे उपजे

सामत दीजै आठ पैर तो दिहाई गर्भ ना कीजै रेण हो विजय तांगत जिया रे तेरी सभी उपर नानका ठाकुर मैं जेही कणचेरी राम तुम गौहर अत गहर गंभीरा तुम पिर हम बहुरिया राम तुम वडे वडे वडूचे हौ इतनी कलहुरिया राम हौ किश नाही एको तू है आपे आप सुजाना अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा सर्व रंग रस माना चरण है सरणी दास है दासी मन मौलै तन हरिया नानक ठाकर सर्व समाना आपन पावन करिया तो जी ऊपर

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा। नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परंपर दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बेकारे ठाकर से मन माना। प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला। कहो नानक कहो निरपा होई सो प्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा। तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन भाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे। अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्वरया परपूरे। ता की सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा। सदा सदा प्रभ को बलिहार है नानक सतगुरबाणा। ऐसा गुरु वड पा

हर तुड़ी नाई है प्रभु ते आई है, बाहुड़ जोड़ ना आई है, गुरचरणी लागे परंपाव भागे, मन चंदिया फल पाई है, हर गुण नित गाए नाम ते आए, फिर सोग नाही संताप, नानक सो प्रभु जी का दाता पूरा जिस पर तप, हर हरे हर गुण निदे हर संतन कै वसियाए राम, संत चरण गुर सेवा लागे तिनी परम पद पाए राम, परम पद पाया या मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी, सफल जन्म होवा पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी, जिसका सा तिन्ही मिल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया मेरा सतगुर सुख पाया, गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी इच सबाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मरे नया वह जाई राम, अबनासी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए, सांत सहज आनंद कनेरे गुरचरणी मन लाए, पूर रहया कटकट अबनासी थान थनंतर साई, कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई, सूही महला पंजवां कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखै दर्स तेरा राम, लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हरिया राधे मेरा राम, हरिया राधे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई, जल थन मयल पूर्ण स्वामी जद देखा तत सोई, परम मोह बेकार नाठे प्रभ नेर हूं ते नेरा, नानक कहो प्रभ कृपा कीजै नेत्र देखै दर्स तेरा, कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिया अबनासी राम, सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम, कटिया जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना, हर हर जप जपिया दिन राती लागै सहित आना, काल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी, कहो नानक प्रभु कृपा कीजै हर गुण सुनिया अविनासी, करोड़ हस्त तेरी टहल कमावै चरण चले प्रभ मार्ग राम, पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़ै तिस तार ग्राम, पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे, महा बिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे, मन बाहित फल पाए सगले कुदरत की मया पारग, कहो नानक प्रभ कृपा कीजै मन सदा चलै तेरे मार्ग, एहो वर एहा वडियाई एहो तन होए वडभागा राम, एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम, मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला, सब किश कीता तेरा सब किश तेरा तू प्रभ मेरा, मेरे ठाकर दीन दयाला, मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा, कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा, सूही महला पंजवां हर जपे हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावै राम, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावै राम, हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी, सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी कथ कहानी, भला संजोग

सागर लहर समुंद सर वेल वर्ष वराहो आप खड़ोवै आप कर आप पीना या पाहो गुरमुख सेवा थाए पवै उन मन तत कमाहो मसक तलहो मजूरियां मंग मंग खसम दराहो नानक पुर दर वे प्रवाह तव दरूणा नाहे को सच्चा वे प्रवाहो महला पहला उज्जल मोती सोहने रतना नाल जुड़न तिन जन वैरी नानका जे बुढ़े थिए मरन पौड़ी हर साला ही सदा सदा तन मन सौप शरीर गुर सबदी सच पाया सच्चा गहर गंभीर मन तन हिरदै रव रहया हर हीरा हीर जन्म मरण का दुख गया फिर पवै ना फीर नानक नाम सलाहे तू हर गुणी गहीर श्लोक महला पहला नानक हो तन जाल जिन जलिया नाम विसारिया पौंदी जाए पराल पिछे हथ ना अंबड़ै तित निवंदै ताल महला पहला नानक मन के काम फिटिया गणत ना आवही किती लहा साम जा बक्से ता तक्का नहीं पौड़ी सच्चा अमर चलायोन कर सच फुरमान सदा निःचल रव रहया सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेवी सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगमा गोचर लख है गुरमुखर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका पीतर तरिया आन खोटे खरे परखियान साहिब कैदी बाण महला पहला नावण चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक पाओ लथी नात्या दोए पा चढ़िया सहोर बाहर तोती तुमड़ी अंदर वेसन कोर साध पले अन नात्या चोर से चोरा चोर पौड़ी आपे हुक्म चलाएंदा जग धंदे लाया एक आपे ही आप लायन गुरते सुख पाया दह दिस एह मन धाम दा गुर ठाक रहाया नावै नो सब लोई दी गुरमत्ती पाया तुर लिखिया मेट ना सकी है जो हर लिख पाया श्लोक महला पहला दोए दीवे चौदह हट नाले जेते जीते ते वनजारे खुले हट हो वावा पार जो पहुंचे सो चलना हार धर्म दलाल पाए निशान नानक नाम लहा प्रवान कर आए वजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई महला पहला राती होवन कालियां सुपेदा से वन देहो बग्गा तपै कणा कालिया काले वन अंधे अकली बाहरे मूर्ख अंध ज्ञान नानक नगरी बाहरे कबे ना पावे मान पौड़ी काया कोटर चाया हर सच्चा आपे एक दूजे पाए खोआया न हो मैं विच वे आपे एहो मानस जन्म दुलंबसा मन मुख संतापे जिसिया बुझाए सो बुझ सी जे सतगुर थापे सब जग खेल रचायो न सवरत आपे श्लोक महला पहला चोरा जारा रंडियां कुटनियां दी बाण वेदीना की दोस्ती वेदीना का खान सिफती सार ना जाननी सदा वसै सैतान गदो चंदन खोलिए पीसा हुस्यो पान नानक कूड़े कत

जरा हाक दी सब मथा की एक ना था कसमाया बावरे तै ज्ञान विचार ना पाया बिरथा जन्म गवाया रहाओ तब लग प्राणी तसै सरेवो जब लग कट मैं सासा जे कट जाए ता पाओ ना जासी हर के चरण निवासा जिसको शब्द बसावै अंतर चूकै तसै प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जन टाले पासा जो जन जान भजै अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर तेजन कबो ना हारै टाल जो जानै पासा सूही ललित कबीर जीओ एक कोट पंच सिकदारा पंचे मांगै हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला हर के लोगा मोको नीत डसै पटवारी ऊपर पुजा कर मैं गुर पै पुकारिया तिन्हों लिया उबारी रहाओ नौ डाडी दस मुंसफ धावै रैयत बसन ना देही डोरी पूरी मापै नाही बहु बिस्टा ला लेही बहत्तर घर एक पुरख समाया उन्दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफ्तर सोदिया बाकी रिजम ना काई संतां कौ मत कोई निंदो संत राम है एको कहो कबीर मैं सो गुर पाया जाका नाओ बबे को राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहकी सार सुहागन जानै तज मान सुखरलिया मानै तन मन दे न अंतर राखै अवरा देखना सुनै अपाखै सो कत जानै पीर पराई जाकै अंतर दर्द ना पाई रहाओ दुखी दुहागन दोए पखहीनी जे ना निरंतर भगत ना कीनी पुरस लात का पंथ दुहेला संगना साथी गवन अकेला दुखिया दर्द वंद दर आया बहुत प्यास जवाब ना पाया कह रविदास शरण प्रभ तेरी जो जानो त्यों कर गत मेरी सूही जो दिन आवै सो दिन जाही करना कूच

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग बिलावल महला।

अगमा गोचर लाख्या पारा, चिंता करो हमारी। जल थल मैयल भरपुर लीना, कड़कड़ जोत तुम्हारी। सिख मत सब तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे। तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा, गुण गावा नित तेरे। जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासे। जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान। आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखे तान। तू दाता नाम प्रमाण, ऐसा नाम निरंजन देओ। हम जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार। राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करावै सोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मन साचै धारिया। अवरना सूझे गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने। हर कै रंग रता मन माने, मनमुख परम भुले बौराने। हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ। मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली, सास गिरास जपो अपने हर पाली। सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली। अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए। बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए। मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास। हर कृपा तारी दसन दास, जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया। त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटंब सहित स्यों। जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै। अहला जन्म गवाया, दूजा पाव ना दे लिव लागणो। जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दाता जन सेवक तेरे। तिनके तैं दुख निवारे, रहाओ तू दयाल दया पदाता। क्या है जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुते होए। ऐसा आख वखाणे, गुरमुख होवै सो मुक्त कहिए। मनमुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी। सदा रहे हर नाले, तिनकी गहन गत कही ना जाई। सच्चा आप सुवारे, परम पुलाणे से मनमुख कहिए। नारोवार ना पारे, जिसनो नजर करे सोई जन पाए। गुर का शब्द संभाले, हर जन माया माहि निस्तारे। नानक भाग होवे जिस मस्तक, काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा, अतुल क्यों तो लिया जाए। दूजा होए ता सोजी पाए, तिसते दूजा नाही कोए। तिसदी कीमत किकू होए, गुर प्रसाद वसै मन आए। ताको जाने दुबदा जाए, रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए। आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए। आपे जाने को सोए, माया का रूप सब तिस्ते होए। जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तसे आए। सब सच दिखाले ता सच समाए। आपे लिव तात है आपे, आप आप बुझाए आपे जापे। आपे सतगुरु शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा, साहिब ते सेवको सेव साहिब ते।
क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनया है समय एक समाना। सतगुर परचय हर नाम समाना, जिस कर्म होवे सो सतगुर पाए, अंधन लागे सही ध्याना रहाओ। क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अवमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करो दिखा वखियाना। आपे गुर चेला है आपे, आपे गुणी निधाना, जो आप चलाए तवे कोई चाले, जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहेब, कौन जाने तेरे कामा, एक ना करमै दे वड़ियाई, एक परम पवै अभमाना। बिलावल महला तीजा। पूरा थट बनाया पूरा, वेखो एक समाना, इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई, मत को तरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवै, सो सतगुर माए समाना, एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नामा रहाओ। चहो जुगा का हुण नबेड़ा, नर मनुखा नो एक निधाना, जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है, कल मैं कीर्त हर नामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है, सोध देखो वेद पुराना, गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यो प्रीत लाए, चूकै मन अभमाना, कहत सुनत सबे सुख पावै, मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा। गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए, तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए, मंगल नारी गावै आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाउ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए, हर जन को मिलिया सुख पाई है, हर गुण गावे सह सुभाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए, हर जो आवसे मन आए, आपे सोभा सद ही पाए, गुरमुख मेले मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए, निकर वासा हर गुण गाए, रंग चलू लै हर रस पाए, ओ रंग कदे न उतरे साज समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा, सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा, जो सच राते तन बौन ना फेरा, नानक नाम दृढ़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा। पूरे गुरते वड्याई पाई, अचिंत नाम वसिया मन आई, हाउ मैं माया शब्द जलाई, दर साचै गुरते सोभा पाई, जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंध होवे मन मेरे, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ। मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को संसार वेखै, बहु न मरे न जंपे खै, कर ही मैं सब कोट निदान, सतगुर दिखाए गया अभमान, सद ही लागा सही ध्यान, अंधन गावे एको नाम। इस युग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जै देखा तरिया समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे भाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निदान दिखाया, गुर का शब्द वत मीठा लाया, नानक त्रिसन बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा, कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यो प्रेरे त्यो करना, ज्यो नठुआ तंत वजाए तंती, त्यों वाजै जंत जना। जप मन राम नाम रसना, मस्तक लिखत लिखे गुर पाया, हर हृदय हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जन अपना, ज्यो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो, हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है, हर किए पतत पवन्ना, ओह ढोवै ढोर हाथ चम चमरे, हर उदर्यो पर्यो सरना, प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो, हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा।
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਗਿਆਨ ਮਤੀ ਸਰਨਾਗਤ ਪੁਰਖਿਆ ਜਨਮਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਖ ਲੇਵੋ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰੋ ਹਮ ਪਾਥਰਹੀਨ ਅਕਰਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮੈ ਰਾਮਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਰਸ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਤਿਆਗੋ ਨਿਫਲ ਕਾਮਾ ਰਹਾਓ ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਸੇ ਹਰ ਤਾਰੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਉਪਮਾ ਤੁਜ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਰ ਜਪਿਐ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾ ਨਾਮਹੀਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੁਖ ਸਹਮਾ ਓਏ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨ ਭਵਾਈਐ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਮੂੜਿਆ ਕਰਮਾ ਹਰ ਜਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੁਰ ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਵਡਕਰਮਾ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਫਲ ਜਨਮ ਮਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਮਰਾ ਚਿੱਤ ਲੁਭਤ ਮੋਹੇ ਬਿਖਿਆ ਬਹੁ ਦੁਰਬਤ ਮੈਲ ਪਰਾ ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਨਾ ਸਕੈ ਪ੍ਰਭ ਹਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੁਗਧ ਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਨਰਹਰ ਨਾਮ ਨਰਹਰਾ ਜਾਨੀ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਮੇਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਰ ਪਰਾ ਰਹਾਓ ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮੀ ਹਰ ਦੇਹੁ ਮਤੀ ਜਸ ਕਰਾ ਤੁਮਰੇ ਸੰਗ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਜਿਉ ਸੰਗ ਕਾਸ਼ਟ ਲੋਹ ਤਰਾ ਸਾਗਤ ਨਰ ਹੋਛੀ ਮਤ ਮਧਮ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰਾ ਤੇ ਨਰ ਭਾਗਹੀਨ ਦੋਚਾਰੀ ਓਏ ਜਨਮ ਓਏ ਫਿਰ ਮਰਾ ਜਿਨ ਕਹੁ ਤੁਮਹਰ ਮੇਲੋ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਨਾਏ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰਸਰਾ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਹਰ ਭਜਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਪਰਾ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਆਵੋ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਕਰੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਇਥ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਖੇਵਟ ਗੁਰ ਸਭ ਤਰੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਗੁਣ ਹਰ ਉਚਰੋ ਮਸਤਕ ਲਿਖਤ ਰਖੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਪਰੋ ਰਹਾਓ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਸੀ ਉਤਮ ਕਿਉਂ ਪਾਈਐ ਉਪਦੇ ਜਨ ਕਰੋ ਸਤਗੁਰ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪੀਓ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਮੀਠਾ ਹਰ ਸੰਤੋ ਚਾਖ ਦਿਖਾਓ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਰਸ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ ਤਿਨ ਬਿਸਰੇ ਸਭ ਬਿਖਰਸੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਹਰ ਸੇਵੋ ਸੰਤ ਜਨੋ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਰੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜੋ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਕੋ ਜਾਪੈ ਹਰ ਮੰਤਰ ਜਪੈਨੀ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ ਨਿਤ ਸੇਵੋ ਦਿਨ ਸੋ ਸਭ ਰੈਨੀ ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੋ ਸਤਗੁਰ ਨੈਨੀ ਜੋ ਇੱਛੋ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੋ ਹਰ ਬੋਲੋ ਗੁਰਮਤ ਬੈਨੀ ਰਹਾਓ ਅਨਕਿਉ ਪਾਵ ਚਿਤਵੀਐ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਸਾ ਹੋਵੈ ਜੇ ਬਾਤ ਹੋਵੈ ਨੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਈ ਬੰਛੈ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਚਿਤ ਨਾ ਚਿਤੈਨੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰ ਜਨ ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਨੀ ਮਤ ਸਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਜੰਤ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜਨਤੈਨੀ ਜਨ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਬੁਲੈਨੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਨਦ ਮੂਲ ਧਿਆਇਓ ਪੁਰਖੋਤਮ ਅਨਦਨ ਅੰਧ ਅਨੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੀ ਕਣ ਚੁਕਾਈ ਸਭ ਚੁਕੇ ਜਮਕੇ ਸੰਦੇ ਜਪ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਪਾਇਆ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਰਹਾਓ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਧਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰੈ ਫਿਰੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਧੇ ਜਿਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਵੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਲੱਗੇ ਸੇ ਉਧਰੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸਭ ਟੂਟੇ ਮਾਇਆ ਫੰਦੇ ਆਪੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਗੋਵਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਸਭ ਵਰਤੈ ਜਿਉ ਰਾਖੈ ਤਵੈ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਤੇਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਵੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੋ ਭਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੋ ਹਰ ਸੰਤ ਭਗਤਾਰਨੋ ਹਰ ਭਰਪੁਰੇ ਰਹਿਆ ਜਲ ਥਲੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਗਾਈਐ ਹਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨੋ ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੀਆ ਹੈ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ ਹਰ ਜਪਿਆ ਹਰ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹੈ ਮੁਕਤ ਦਾਤਾ ਹਰ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਸਫਲ ਜਾਤਾ ਮਿਲ ਸੰਗਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵਨੋ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਰਿਆ ਸਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਬਿਨਸ ਬਿਨਾਸਾ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸੀ ਸੋ ਜਨ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਪਾਸੀ
ਕੋਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਨੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪਗ ਲਾਵਨੋ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੌਪਦੇ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਤਿਸਿਓ ਮੋਹੋ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਭ ਨਾਸੀ ਤੋਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਏ ਮਾਰਗ ਪਾਵੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ ਵਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਇਥ ਪਾਵੈ ਪਾਰ ਰਹਾਓ ਭਵਨ ਚੁਲਾਰੇ ਮਾਇਆ।

हौ मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावै, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हौ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिलै ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पड़दा देख पही निहाल। जिन चाखिया तिस आया साध, जो गूंगा मन में मिसमाद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण अक्स माया। बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिगन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ। सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाकावड़ प्रताप। गुर प्रसाद ना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले। नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा। सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे। मोहे अनाथ तुमरी सरनाई, कर कृपा हर चरण ते आई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जम पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जाके संग सदा प्रभ बसे। प्रभ का नाम मंतन आधार, बिसरत नाम हो तन शार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा यानड़िए कै कर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे। मैं मन तेरी टेक अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे, राखण कौ तुम एक रहाओ। सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो हो दयाला। सफल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला परपूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेसर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता। हर नाम आराधे नाम वखाणे, हर नाम में ही मन राता। सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखण पावा। वडभागी से काढ़िया प्यारे, संत संगत जिन्ना वासो। अमृत नामा राधिये निर्मल, मने होवे परगासो। जन्म मरण दुख काटिये प्यारे, चूके जमकी काने। तना प्राप दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाने। ऊंच या पार

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकड़ सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पो सब अपना, कमन समत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मंगन, तुम पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काट है पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पारे उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंधकूप ते कर गै लीना, जय जयकार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भय परसीना। बिलावल महला पंजवा, सगल मनोरथ पाई मीता, चरण कमल स्यों लाइए चीता, हौ बलिहारी जो प्रभु ते आवत, जलन बुझे हर हर गुण गावत। रहाओ सफल जन्म होवत वटभागी, सा संग्राम लिव लागी, मत पत धन सुख सहज आनंदा, एक निमख ना विसराओ परमानंदा, हर दर्शन की मन प्यास कनेरी, पंत नानक शरण प्रभ तेरी। बिलावल महला पंजवा, मोहे निर्गुण सब गुणे बेहूना, दया तारे अपना कर लीना, मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया, कर कृपा प्रभ घर में आया। रहाओ भगत वछल पै कट नहारे, संसार सागर अब उतरे पारे, पतत पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया, पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया, सासंग प्रगटे नारायण, नानक दास सब दुख पलायण। बिलावल महला पंजवा, कवन जाने प्रभ तुमरी सेवा, प्रभ अविनाशी लाख्या पेवा, गुण बेअंत प्रभ गैर गंभीरे, ऊंच महल स्वामी प्रभ मेरे, तू अपरंपर ठाकुर मेरे। रहाओ एक सबे नाही को दूजा, तुम ही जानो अपनी पूजा, आपो कछु न होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई, कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा, मात गर्मे हा दे राखिया, हर छोड़ बिख्या फल चाखिया, भज गोबिंद सब छोड़ जंजाल, जब जम आए संगारे मूड़े, तब तन बिन सजाए बेहाल। रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया, करण हार एक निमख ना जापिया, महा मोह अंधकूप परिया, पार ब्रह्म आया पटल बिसरिया,
ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧੋ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਣੇ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਅਨਕ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਕੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਗਣੇ ਰਹਾਓ। ਸਗਲ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਭਏ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ। ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਹ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਪੂਰੀ ਪਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਵਿਧਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਕਰ ਆਇਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰਿਆਣਿਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ,

आओ रूप तूप सौगंधता कापर पोगाद मिलत संग पापिष्ट तन होए दुर्गाद फिरत फिरत मानुख पाया खिन पंगन देहाद। ए अवसर ते चूकिया बहु जोन परमाद प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद। सूख सहज नानक आनंद ताकै पूर्ण नाद बिलावल महला पंजवा चरण पहे संत बोए था तरे सागर जेत मार्ग पायो ध्यान मैं गुरदसे पेत। हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठत सोबते हर हर हर चेत रहाओ। पंच चोर आगै पगे जब साध संगेत पूंजी साबत कणो लाभ ग्रह सोभा सेत। निहचल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत परम भुलावा मिट गया प्रभ पेखत नेत। गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिया केत नानक पाया साध संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब प्रम मिटे गत पई हमारी। जा दिन पेटे साध मोहे उवा दिन बलिहारी तन मन अपनो जियारा फिर फिराओ वारी। रहाओ एत छिडाई मोहे ते इतनी दृढ़तारी सगल रेन एहो मन पया बिनसी अपतारी। निंद चिंद पर दुख ना ए खिन मैं जारी दया माया अर निकट पेख नाही दूरारी। तन मन शीतल पय अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तहनो नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारो बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल। तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयालो निस्बासर मन अंध हो तो चिरवत कृपाल। रहाओ जगते उदाहरण साध प्रभ तिन लागो पाल मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल। उक्त सियाण पो कश नहीं नाही कश काल ब्रह्म पै राखो मोह।

प्रव्यग्म अपार बस्त कमावत सब सुखी किश न दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करै सत थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवां हर हर हर हरा दिया होइए आरोग रामचंद की लष्ट का जन मारिया रोग रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचे भोग साध संगत कह वारण मिलया संयोग जिस सिमरत सुख पाई है बिन सह बेहोग नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवां दो पदे कर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आवरियो पाप सब त्यागया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया रहाओ बहा पकड़ प्रभ काढ़िया की ना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवां कर धर्मस्तक थापिया नाम दीनो दान सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन जो जो चित वह साध जान सो लेता मान रहाओ शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवां चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज रामदास पुर कीने गुरदेव रहाओ सदा सदा हर त्याई है किश बिघन ना लागे नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे। बिलावल महला पंजवां मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे उचरद गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागै तंत मंत न जो है तित ताख न लागै रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागै आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागै। बिलावल महला पंजवां जी जूत वस प्रभु कै जो कह सो करना पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किछ नहीं करना।

राग बिलावल महला पंजवा चौपदे दोपदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुलिया नूपा रहाओ। बिस्मन बिस्म पए जौ पेखियो कहन ना जाए वड्याई मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा बिन हर काम ना आवत है जा स्यो राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है रहाओ। कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बखैठ गौरी खावत है। तिरण को मंदिर साज सवारो पावक तलै जरावत है ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी जोफा हावत है कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपारिया मोली प्राण प्यारो मन आधारो चीत चितवाओ जैसे पांत बोली रहाओ। सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रेरवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पेटे साथ दयारा तब ते दुर्मत दूर पही रहाओ। पूर्ण पूर्ण रहो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते ओ मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तह रया समाई रहाओ जय महाभयान दुख जम सुनिया तह मेरे प्रभ तू है सहाई शरण पर्यो हर चरण गए प्रभ गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा आगम रूप अविनाशी करता पतत पवित एक निमख जपाई है अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले संत चरण चरण मन लाई है। कित विधिया कित संयम पाई है कौ सुरजन के जुगति त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा ओ तिसकी लई लई फुन जाई है नानक सरन सरन सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी तंद बंद अर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रहाओ। सुख सहज अर करो आनंदा गुरते पायो नाम हरी ऐसो हरस बरना सा कहो गुरपुर है मेरी उल्ट तरी। पेख्यो मोहन सब कै संगे ऊं

बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे, तिस आग्या क्या कहता रहाओ। अन बोले कहो तुही पछाने, जो जी अन मैं होता, अरे मन काए कहां लो डहकै, जो पेहती संग सुनता। ऐसो जान पहे मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, जो कालर पीत गिरिय रहाओ। जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितवे नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेर आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानका रखाया प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे। अंधकूप मैं परे उपरानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंतन रसना हर चीना, पय अनंदा मिट आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना रहाओ। एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रख अपने को, काहू ना करते कशकीना। बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसै, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपूरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई रहाओ। निवरे दूत दुष्ट बहराई, गुरपूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा, प्रभ मेरे कावड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते ऊपर को नाही। बिलावल महला पंजवा, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कही दुख न व्यापै, आगै दरगै पूर्ण काम रहाओ। आप त्याग परिय नित सरणी, गुर ते पाइय हो निदान, जन्म मरण की कटिय फांसी, साची दरगै का निशान। जो तुम करो

कही तज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल आधार हौ जाओ सद बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे तजान कत ना जाहे। हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उधार पैतरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप बेकार हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखी है बिस्माद चख आनंद पूर्ण साध। नह डोलिए इतयूत प्रभ बसे हर हर चीत। ते नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जमना पेखे नैन सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल प्रभ।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ ना नहीं जानिया आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया। बिलावल महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावे तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड़ विधि ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा। अमृत प्रे का नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मने लागे नाम लैण ना आवे गृह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोहे नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यों रखो चतराई मोहे नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं

तही जैसे पुरवन पात मिथ्या कर माया तजी सुख सहज विचार। कह कबीर सेवा करो मन मंज मुरार, बिलावल जन मरण का भ्रम गया गोविंद लिव लागी, जीवत सुन समानिया गुरसाखी जागी रहाओ। काशी ते तुन उपजै तुन काशी जाई, काशी फूटी पंडता तुन कहां समाई। त्रिगुटी संद मैं पेखिया कट हूं कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी कट माहे त्यागी। आप ते जानिया ते समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मनमाना। बिलावल चरण कमल जा कर दे बसै, सो जन क्यों डोले देव। मानो सब सुख नव नित ता कै, सहज सहज जस बोले देव रहाओ। तब एह मत जो सब मैं पेखै, कुटल गांठ

एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौपदे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर दिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहा समाई। मेरे मानो आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अवर कहूं की जय साने फल आस सब वृथी जाई रहाओ। जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की। जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितए कम आई। यह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की। जो तेरा कालिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी। जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेवी है नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय प्रवासा। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हरि अपनी पैज रखे जनदासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ताया गए अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हरि अपने स्वामी पहे जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे

जो तुद उपकर दुख सुखासा तिसका प्रवासा, क्योंकि जय मन मेरे जोवंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जप, तन अंत छाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो, एहो छूटन का साचा प्रवासा। गोंड महला चौथा, हर सिमरतो सदा होए आनंद, सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता, गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना, जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा मैं सब निदान सो हर जप मन मेरे, गुरमुख खोज लो हर तना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, तिनके चरण मलो हर दसना। शब्द पछाण राम रस पावो, ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना। ते जन की वडियाई हर आ वधाई, ओ कटे ना किसे की कटाई। एक तिल तिल तिल ना, जिस ते सुख पावे मन मेरे, सो सदा त्याय नित कर जुड़ना। जन नानक हर दानिक दीजै, नित बसे हृदय हरि मोहि चरना। गुण महला चौथा, जितने साहा पात साह उमराव, सिकदार चौधरी सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थर नेह चलो, तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरि पज सदा दीबान, जो हर महल पावे गुरबचनी। तिस जेवड़े अवर नाही किसे दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत, दिसे मन मेरे सब बिनस जाहे। जो रंग कुसुंभ कचान, हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे। जित हर दरगह पावे तू मान, ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर त्यावै सो प्रधान, ज्यों चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा। त्यों सत संगत

तब पेटे गुरसा दयाल दिन रहन नानक नाम ते आए सुख सहजानंद हरन आए। गोंड महला पंजवा गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर कै शब्द मंत्र मन मान गुर के चरण हृदय लै तारा गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कार मत को।

जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपूरे की बेअंत वडाई, गुरप्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार मैं भया प्रगास, जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाईए पाई, गोंड महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर की टेक रहो दिन रात, जा की कोई न मिट दात, गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो प्रवान, रहाओ गुर चरणी जा का मन लागे, दुख दर्द प्रमता का भागे, गुर की सेवा पाए मान, गुर उपर सदा कुर्बान, गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल, गुर के सेवक को दुख ना व्यापै, गुर का सेवक दे दे जापै, गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर आसमाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग, गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद, गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत, गुर मेरा देओ अलाखा पेओ, सर पूचरण गुर सेओ, गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अंधन जपो गुरु गुर नाओ, रहाओ गुर मेरा ज्ञान, गुर दै ध्यान, गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुर बोइथ तारे पवपार, गुर सेवा जमते छुटकार, अंधकार मैं गुरमंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा, गुर पूरा पाईए वडभागी, गुर की सेवा दुख ना लागी, गुर का शब्द ना मेटै कोए, गुर नानक नानक हर सोए, गोंड महला पंजवा, राम राम शंकर व्यवहार, राम राम राम प्राण आधार, राम राम राम कीर्तन गाए, रमत राम सबरे उसमाए, संत जना मिन बोलो राम, सब ते निर्मल पूर्ण काम, रहाओ राम राम तन संच पंडार, राम राम राम कार्याहार, राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए, राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लिवलाए, राम राम जप निर्मल पै, जन्म जन्म के किल बिख गए, रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम पै पार उतारे, सब ते ऊच राम प्रगास, निस्बासर जप नानक दास, गोंड महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे, दास संग ते मार बिदारे, गोविंद भगत का महल ना पाया, राम जना मिल मंगल गाया, सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार, राम भगत के पानी हार।

मोहे निर्गुण गुण किशु नाहे, सर्व निधान तेरी दृष्टि माहे। नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गोंड महला।

नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोध संसार, नारायण कह तो जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण, नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप, नारायण साध संग नारायण।

जा कौ राखे रखनहार, तिसका अंकर निरंकार रहाओ। मात गर्भ में अगन्ना जो है, काम क्रोध लोमो न पो है। साध संग जपे निरंकार, निंद कै मोय लागे शार। राम कवचो दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको हत नाहे। जो जो गर्भ करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन मैं रुलता खाकू नाल। है पी साचा हो बनहार, सदा सदा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्र प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महानूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ। ना हो बूढ़ा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला। ना हो बिनसे ना हो जाए, आज जुगादी रहा सुमाए। ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं है समाया, एहो परंपर होता आया। पाप उनका इसलिए अपना लागे, कटकट यंत्र सद ही जग। तीन गुणा एक सकतो पाया, महामाया ता की है छाया। अशाला शेद अपे दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ता की गतमित कशु ना पाए, नानक ता कै बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कै बलहार है जाओ। संतन कै संग राम गुण गाओ। संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड़ पागी पए। राम जपत कछ विघ ना लागे, राम जपत कछ विघ ना व्यापै। गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ। पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल। काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए। सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तुहूर। राग गौ

सवारै अपने कर्म की गत मैं क्या जाना मैं क्या जाना बाबा रे रहाओ हाड़ जले जैसे लकड़ी का तूला केस जले जैसे कास का पूला कहो कबीर तभी नर जागे जमका डंड मूंड में लागे गोंड आकाश गगन पाताल गगन है चौदस गगन रहाए ले आनंद मूल सदा प्रखोतम कट बिनसै गगन न जाए ले मोहे बैराग पयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ पंच तत मिल काया कीनी तत कहां ते कीन रे कर्म बद तुम जियो कहता हो कर्म किन जियो दीन रे हर मैं तन है तन मैं हर है सर्ब निरंतर सोए रे कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे राग गोंड बाणी कबीर जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद पूजा बांध पिला कर डारे हो हस्ती क्रोप मूल में मारे हो हस्त पाक

इस मरते कहो जे कहो रोवे, जो रोवे सोई पत खोवे। गुर प्रसाद मैं डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश, जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड। टूटे तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सर चढ़ बोकाल। एहो मुंडिया सगलो दरब खोई, आवत जात नाग सर।

पांच नारद कै संग बेदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, नाम बिना कैसे पार उतरै, कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै, रहा जारो तिसै जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै, रहाओ जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मणि परोई है, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अवगत जाई है, जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाहीं दरबार, जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड। कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कसवट्टी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे, कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार, रहाओ नाचन सोए जो मन स्यो नाचे, झूठ ना पतिये पर चै साचे, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल, बजारी सो जो बजार है सो दे, पांच पलीते कहो प्रबोध, नव नायक की पंक्त पछान, सो बाजारी हम गुरमाने, तस्कर सोए जे तात ना करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन, धन गुरदेव अतरूप बिचखन गोंड। तन गोपाल तन गुरदेव, तन अनाद भूखे कवल टहकेव, तन वे संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी, आद पुरखते हुए अनाद, जपिए नाम अन्न कै साद, रहाओ जपिए नाम जपिए अन्न, अंबे का संग निका वन, अन्न बाहर जो नर होवे, तीन पवन में अपनी खोवे, छोड़ अन्न करे पाखंड, ना सोहागण ना ओहे रंड,

राग गोंड बाणी नाम देओ जी की कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अस्मेत जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सग संवादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड। नाद प्रमे जैसे मृगाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा

नर ते सुर होए जात निमुख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुरग कौ जीते ओ सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेके नैकट काव मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जने उदरे नामे की निजमत एहे गोंड मोहे लागती ताला बेली बछरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलफै ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ जैसे गाय का बाछा शूठला तन थन चोखता माखन कूटला नाम देव नारायण पाया गुर भेड़ता लख लखाया जैसे बिखै हेत पर नारी ऐसे नामे प्रीत मुरारी जैसे ताप ते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देव जियो की कर दूजा एको अंकार सदगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब परमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंधले की लकरी हर ए नमस्ते हर ए नमः हर हर करत नहीं दुख जमै रहाओ हर हर नक्श हरे परा।

कपट है भरी, सिमरन द्रोपद सुत उदरी, गौतम सती सला निस्तरी, केसी कंस मथन जिनकिया, जी दान काली कौदिया, प्रणवै नामा ऐसो हरी, जास जपद पै अपदा तरी, गोंड पैरो पूत सीतला तावै, खर बाहन ओ शारो डावै, हाँ तो एक

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करे, नरसै नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखिया था। रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जय देहोरा ना मसीत। रागौंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

जप मुकंद मस्तक निशानं, सेव मुकंद करै बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी, एक मुकंद करै उपकार हमरा कहां करै संसार। मेटी जात हुए दरबार तुही मुकंद जोग जुगतार, उपजो ज्ञान हुआ प्रगास कर कृपा लीने कीटदास। कहो रविदास अब तृष्णा चुकी, जप मुकंद सेवा ताहू की। गोंड जे हो 68 तीर्थ नावे, जे हो द्वादश शिला पूजावे, जे हो कूप तटा देवावे करै निंद सब बिरथा जावे। साध का निंदक

करने दो कमने नहीं गुना। जे हो अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना संड करे निंद बोजू नी हंड। निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नरहरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सरबर भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कमन दर कहिया। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिया। जीव त्यान मरिया रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कह

रामकली महला पहला, सागर मैं बूंद, बूंद मैं सागर, कवन बुझै बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ, दिन मैं रहण रैण मैं दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख मैं नार, नार मैं पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुर

जग जीवन दाते हर संत पगी ले पावै। हौ काटो काट बाढ़ सिर राखो जित नानक संत चढ़ आवै। राम

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे यो नृत्यकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक राम कली।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रै रस हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्थिर। इउ जपया नाथ दिन रह नाई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवा करण करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय नेकाम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाऊ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पर्दा टूटा

जां कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन संतन कै बलिहारी जां की ओट गही सुख पाया।

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मत।

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम पाई। राम कली महला पंजवां गहो कर।

रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे, तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे, एक ठौर ओ कई ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड, राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह, इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे, वडभागी नानक हो तरे। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर रहा प्रभ एक, रत्न मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप पछान, पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाईए, बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा, कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे, जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे, नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा, दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास ए बित, काटी बंद हर सेवा लाए। हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा, रसक रसक गुण गावे हर जनो। अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

सदा आनंद न होवी सोग, कबु न व्यापै हमै रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा। परमगत पावै हर सिमर प्राणी रहाओ। गन मिन देखो सगल विचार, नाम बिना को सकै न तार। सगलो पावना चल संग, पव जल तरिय।

मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कबो न विसर गोपाल तेरे दास की हो मातूर नानक की प्रभ सरदा पूर राम कली महला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाही कोय तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याय पूरा जिस कर्म तरण तारण प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगह पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुरमत बिनसै रचै हर नाए चरण कमल स्यो लागी प्रीत गुरपुरे की निर्मल रीत पहो भागा निरपव मन बसै अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे तोट न आवै अखुट भंडार नानक भगत सोहै हर द्वार राम कली महला पंजवा रतन जिवे हर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कष्ट उठ न आवै अंत नहीं हर पारावार रहाओ कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी सुन समाद गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन भगत भगत संग प्रभ गोष्ट करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर

अवतार न जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गाते आप जाने, सुन सुन अवर वखाने रहाओ, संकरा नहीं जाने पेव, खोज तहारे देव, देविया नहीं जाने मर्म, सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपना रंग करता केलो, आप बिछोरे आपे मेल, एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी, नहीं लेप तिस पुन्ना पाप, नानका प्रव आपे आप, रामकली महला पंजवा, किशु काजना की ओ जान, सुरत मत नाही किश ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म, किशु ना जानो कैसा कर्म, ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ, रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखे ब्याद के गाव में बास, करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक, सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम, तू अगंत जी का दाता, जिसे जनाम है तिन तू जाता, जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधा है प्रभ गुणतास, नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहेब मेरा मेहरबान, रामकली महला पंजवा, रखन हर दयाल, कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल अराधय जंत, मिलिया प्रभ गुर मिलमंत, जियन को दाता मेरा प्रभ, पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट राता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट, हृदय जप परमानंद, मन माहे पय आनंद, तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण, संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचे पार, सुमत सार।

सगल सियान पिछाड़ कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे से ही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यों वासा मनसा पूर्ण होवे पावे सगल निधान गुर स्यों रहाओ दूजा नहीं जाने कोए सतगुर निरंजन सोए मानुख का कर रूप न जान मिली न माने मान गुर की हर टेक टकाए अवरे आसा सब लाहे हर का नाम मांग निधान ता दरगह पावे मान गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत् सतगुर पय दयाल नानक दास निहाल राम कली महला पंजवा होवे सोई पहलमान अपना तजा मान दिन रहन सदा गुण गाओ पूर्ण ही सो आओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियाणप बहु चतराई गुर का जप मंत निर्मल रहाओ एक की कर आस पीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भवजल उतरे पार देवन हार दा तार अंतना पारा वार जा कै कर सर्ब निदान रखन हार निदान नानक पाया एहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए रामकली महला पंजवा दुलभ देह सवार जाए ना दरगह हार हलत पलत तुद होए वड्याई अंत की बेला ले छड़ाई राम के गुण गाओ हालत पलत होहे दो है सुवेले अचरज पुरख ते आओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिन सह सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तमे हो कर्म सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर सिमरण तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरै पार पूर्ण तेरी होवे आस जम की कटिया तेरी फास गुर का उपदेश सुनीजै नानक सुख सहज

पाए, बूढ़त लोहो साध संग तरह, नानक सह प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा, मन माहे जा भगवंत, गुरपुर एहो दीनो मंत, मिटे सगल पैतरास, पूर्ण होई आस, सफल सेवा गुरदेवा, कीमत किश कहण ना जाई, साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप, तिसको सदा मन जाप, तिसकी सेवा करनी तो सच सहि सुख पावे मीत। साहिब मेरा अत भारा, खिन मैं था प्यो था पनहारा, तिस बिन अवर ना कोई, जनका राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय, अपने सेवक को दर्शन दी जय, नानक जापी जब जाप, सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा, बिरथा प्रवासा लोक, ठाकर प्रभ तेरी टेक, अवर छूटी सब आस, अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे, कार्ज तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण, चरण कमल हर शरण, मन तन हर ओही ते आया, आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, रखन हार निदान। सर्व की

कारण करण करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लाह लाख अपार खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ जगनाथ जगजीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

दर्शन कहो जाइए कुर्बान, चरण कमल हृदय तर ध्यान, तूर संतन की मस्तक लाए, जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस भेड़ मिटे अभमान, पार ब्रह्म सब नदरी आवे, कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ। गुर की कीर्त जपिए हर नाओ, गुर की भगत सदा गुण गाओ, गुर की सुर तो निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान, गुर बचनी समसर सुख दुख, कदे ना व्याप तृष्णा भूख, मन संतोख शब्द गुर राजे, जब गोबिंद पढ़दे सब काजे, गुर परमेसर गुर गोविंद, गुरदाता दयाल बख्शिंद, गुर चरणी जा का मन लागा, नानक दास तिस पूर्ण भागा। राम कली महला पंजवा, किस पर वासे बिचरे भवन, मूड मुगद तेरा संगी कवन, राम संगी तिस गत नी जाने, पंच बटवारे से मीत कर माने, सो कर सेव जित उदरे मीत, गुण गोविंद रविय दिन राती, साध संग कर मन की प्रीत रहाओ। जन्म बिहानो अहंकार अरवाद, तृप्त न आवै बिखिया साध, परमत परमत महा

सगले साज करत जगदीश, ठगन हार अनठगदा ठग, बिन मखर फिर उठ लागे। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तां की परम गत होए। राम कली महला पंजवां, जो तिस पावे सो थिया, सदा सदा हर की सरनाई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लक्ष्मी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखैठ गौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़े नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसना बुझे बहुत हया, असाद रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्हीं साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली

दुर्मत सगल बिनासै, राम भगत मन भीजै रहाओ। मन माया मैं उर्ज रहो है, बूझे न कछ ज्ञाना, कौन नाम जग जा कै सिमरै, पावै पंडरबाना। पय दयाल कृपाल संत जानो, तब ए बात बताई, सर्व धर्म मानो ते किए, जेह प्रभ कीर्त गाई। राम नाम नर निसबासर मैं, निमक एक युर धार है, जम को त्रास मिटै, नानक तेह अपनो जन्म सवार है। राम कली महला नावा, प्राणी नारायण सुध लेह, छिन छिन औध कटै निसबासर, बिरथा जात है देह रहाओ। तरना पो बिखियन स्यों खोयो, बालपन अज्ञाना, बिरद पयो अजहू नहीं समझै, कौन कुमत उर जाना। मानस जन्म दियो जे ठाकर, सो तै क्यों बिसरायो, मुक्त होत नर जा कै सिमरै, निमखना ता को गायो। माया को मद कहां करत है, संगना काहू जाई, नानक कहत चेत चिंता मन, होए है अंत सहाई। राम कली महला पहला, अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सोई चंद चढ़ै से तारे, सोई दियर तपत रहै, सा धरती सो पौन चुलारे, जुग जी खेले थाव कैसे, जीवन तलब निवार, होवै प्रवाणा करै तिंगाणा, कल लखण विचार। रहाओ कितै देस ना आया सुनियै, तीर्थ पास ना बैठा, दाता दान करे तह नाही, महलो सार ना बैठा। जे को सत करे सो छीजै, तब कर तप न होई, जे को नौ लय बदनामी, कल के लखण एई। जिस सिकदारी तिसै खुवारी, चाकर के हे डरना, जा सिकदार पवै जंजीरी, ता चाकर हथो मरना। आख गुणा कलियाई है, तेह जो केरा रया तपावस, जे गुण देह ता पाई है रहाओ। कल कल वाली सरा निबेड़ी, काजी कृष्णा होवा, बाणी ब्रह्मा बेदा थरबण, करनी कीर्त लहया। पातविण पूजा सतविण संजम, जतविण काहे जनेऊ, नावो तोवो तिलक चढ़ावो, सोचविण सोच ना होई। कल प्रमाण कतेब कुरान, पोथी पंडित रहे पुराण, नानक नाओ पया रहमान, कर करता तू एको जान। नानक नाम मिले वड्याई, एदू उपर कर्म नहीं, जेकर होंदै मंगन जाइए, फिर ओ लामा मिले तही। राम कली महला पहला, जग पर बोधै मड़ी बधावै, आसन त्याग कहे सच पावै। ममता मोह कामण हितकारी, ना उदूती ना संसारी, जोगी बैस रहो दुबदा दुख भागै, कर कर मांगत लाज ना आगै रहाओ। गावै गीत ना चीनै आप, क्यों लागी निवरै प्रताप, गुर कै शब्द रचै मन पाए, भिख्या सहज विचारी खाए। भस्म चढ़ाए करै पाखंड, माया मोहे सहजम डंड, फूटै खापर पीख ना पाए, बंधन बांध्या आवै जाए, बिंदना राखै जति कहावै, माई मांग तो त्रै लोबावै। निर्दया नहीं जो तो जाला, बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला, पेख करै खिंथा बहु थटुआ, झूठो खेल खेलै बहु नटुआ। अंतर अगन चिंता बहु जारे, विणकर्मा कैसे उतर सपारे, मुंद्रा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान। जेहवा इंद्री साद लोबाना, पशु पय नहीं मिटै निशाना, त्रिबद लोगा त्रिबद जोगा, शब्द विचारै चूक सोगा। उज्जल साच सो शब्द होए, जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ निद तू करना जोग, थापो थापे करे सोहोग। जात सत संजम सच सोचीत, नानक जोगी त्रि पवन मीत, राम कली महला पहला। खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द तोने अंतर जागी, वाजे अनहद मेरा मन लीना, गुरबचनी सचनाम पतीना।
ਪ੍ਰਾਣੀ ਰਾਮ ਭਗਤ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈਐ ਰਹਾਉ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਵਰਜ ਸਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੈ ਮਿਲ ਮਿਲਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲ ਕਹੀਰਾ ਤਿਤਰਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੀਰਾ।

आओ मैं जाए शब्द कर लही है रहाओ। गण गण जोत कुकंडी कीनी पढ़े सुना मैं तत् न चीनी। सब सही ऊपर गुर शब्द विचार होर कथनी बदौ ना सगली शार। नावै तोवै पूजै सैला बिन हर रातो मैलो मैला। गर्भ निवार मिले प्रभ सार्थ मुक्त प्राण जप हर कृतार्थ। वाचै वादना वेद विचार है आप डुबै क्यों पितरा तार है। घट घट ब्रह्म चीने जन को ए सतगुर मिले ता सो जी होए। गणत गणी है सहसा दुख जी है गुर की शरण पवै सुखती है। कार्य अपराध शरण हम आया गुर हर बेटे पुरख कमाया। गुर शरण ना आई है ब्रह्म ना पाई है परम पुलाई है जन मरियाई है। जम दरबा दो मरे बेकार नारद नाम ना शब्दाचार। एक पांदे पंडित मिस्र कहावै दुबदारा ते महल ना पावै। जिस गुर प्रसादी नाम आधार कोट मदे को जन अपार। एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक। गुरमुख विरली एको जानिया आवन जाना मेट समाणिया। जिनकै हृदय एक अंकार सर्वगुणी साचा विचार। गुर कै पाणे कर्म कमावै नानक साचे साच समावै। आराम कली महला पहला हठ निग्रह कर काया छीजै। वर्त तपन कर मन नहीं पीजै। राम नाम सर अवरना पूजै। गुर से मना हर जन संग कीजै। जम जनदार जोहे नहीं सकै। सरपन डस ना सकै हर का रस पीजै। रहाओ वाद पड़े रागी जग पीजै। त्रैगुण बिखिया जन मरीजै। राम नाम बिन दुख सहीजै। चारस पवन सिंहासन पीजै। न्योली कर्म खट कर्म करीजै। राम नाम बिन बिरथा सास लीजै। अंतर पंच अगन क्यों तीर जतीजै। अंतर चोर क्यों साध रहीजै। गुरमुख होए काया गढ़ लीजै। अंतर मैल तीर्थ पर मीजै। मन नहीं सूचा क्या सोच करी जै। किरत पया दोष का कौ दीजै। आना खाहे देही दुख दीजै। बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजै। मनमुख जन्म जन्म मरी जै। सदगुर पूछ संगत जन की।

मंडी हुक्म बुझै सो जोगी कहिया एक स्यों चित लाए सहसा टूटै निर्मल होवै जोग जुगत इव पाए नदरी आवंदा सब किश बिनसै हर से ती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै ता एह सो जी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करै ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करै जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जो जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नदर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचों परम चुकाए विण वजाई किंगरी वाजै जोगी सा किंगरी वजाए कह नानक मुक्त होवै जोगी साचे रहै समाए राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड़ियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजै तिसते बिनसै अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर न देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवै कट अंतर सच्चे सो लिव लाई सत्संगत में नाम निर्मोलक वड्डे पाग पाया जाई भरम ना चुकाओ सतगुर सेवाओ मन रखो इकठाई बिन नाम ऐसा पूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुत गवाई हंडै पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी में आसन बैसै गुरसबदी जोग पाई तातर बाजी शब्द निवारे नाम वसै मन आई एहो शरीर सरवर है संतो इशनान करे लिव लाई नाम इशनान करै से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेतै नाही बिन नामै बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूर्त त्रै गुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटै चौथे पद लिवलाई पंडित पढ़ै पढ़वाद वखाणै तिन्ना बूझ ना पाई बिखिया माते परम पुलाए उपदेश कहे किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई

मनसा मार मन सहि समाना, बिन रसना उस्तत कराई। लोयन देख रहे बिस्मादी, चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मिलाई। हाँ गुरसा लाही सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती, नामों गत पत पाई। राम कली महला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो। कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई। नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला। संतो क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होवे। पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोग संतो। मन मुक्ताए ना पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो। एह पूजा थाए पाई, पवित्र पावन से जन साचे। एक शब्द लिवलाई, बिन नामे होर पूज ना होवी। भरम भुली लोकाई, गुरमुख आप पछाणे संतो। राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूज कराए। गुर शब्दी थाए पाई, पूजा करे पर विद नहीं जाने। दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने। पाणा मन वसाई, पाणे ते सब सुख पावे संतो। अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो। कूड़ करे वड्याई, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े। लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणे। गत में तो तिन ही पाई, एहो मनुआ सुन समाद लगावै। ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे। सतसंगत मिलाई, गुरमुख गावै आप गवावै। दर साचै सोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे। सच नाम लिवलाई, पै भंजन अत पाप निखंजन। मेरा प्रभ अंत सिखाई, सब किश आपे आप वरतै। नानक नाम वड्याई, राम कली महला तीजा। हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल शब्दे मैल उतारी। संतो गुरमुख नाम निस्तारी, सच्चा नाम वस्या कट अंतर। करतै आप सवारी रहाओ, पारस परसे फिर पारस होए। हर जीव अपनी कृपा तारी, एक पेख करे फिर अभिमानी। तिन जुए बाजी हारी, एक आंदन भगत करे दिन राती। राम नाम उर तारी, आंदन राते सहजे माते। सहजे हों मैं मारी, पै बिन भगत ना होई कभी। पै पाए भगत सवारी, माया मोह शब्द जलाया। ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता। आपे बख्श भंडारी, तिस क्या गुणा का अंत ना पाया। हों गावा शब्द विचारी, हर जियो जपी हर जियो सालाही। विचों आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया। खुट सच्चे भंडारी, अपनिया भगतां नू आपे तुठा। अपनी कृपा कर कल तारी, तिन साचे नाम की सदा भुख लागी। गावन शब्द विचारी, जियो पिंड सब किश है तिसका। आखण बिख विचारी, शब्द लगे से जन निस्तरे। पौजल पार उतारी, बिन हर साचे को पार ना पावे। बूजे को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया। मिल हर शब्द सवारी, काया कंचन शब्दे राती। साचै नाए प्यारी, काया अमृत रही पर पूरे। पाइय शब्द विचारी, जो प्रभ खोजै से ही पावै। होर फूट मोए हंकारी, बादी बिनसै सेवक सेवै। गुर कै हित प्यारी, सो जोगी तत् ज्ञान विचारे। हम मैं तृष्णा मारी, सतगुर दाता तने पछाता। जिसनो कृपा तुम्हारी, सतगुर ना सेवै माया लागे। डूब मुए अहंकारी, जिचर अंदर सास। तिचर सेवा कीचै, जाय मिलिए राम मुरारी।
ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ, ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੁਮਾਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਵਿੱਟੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏਗਾ, ਉਭਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪ ਜਗਾਏ ਸਹੀ ਜਾਗੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਮੂਏ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ, ਭਗਤ ਜੀਵੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਗਾਈ ਸੰਤੋ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਈ, ਏਕ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਘਟ।

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधा लाई, तिसै सरे वो ता सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए अलख न लखना जाई, आपे मारजी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई, एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई, सेवड भागी जिनी एको जाता सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहन ना जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर आपे परम पुलाई, वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिरै लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया सतगुर बूझ बुझाई, एक ना नामो आप पुलाए एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर ना कोई राजा करत पावस बणत बनाई, न्याओ तिसै का है सद साचा विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो जिन गुरमुख बणत बनाई, सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई, नानक सुन वेख रया विस्माद मेरा प्रभ रवया सर्ब थाई। राम कली महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किन्ही किया परविरत पसारा किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल भयंगम सादे मोहे दीन हर हर आराधे दे।

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना। भगत सरण जो आवे प्राणी तिस इहां उहां ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्य वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको अंकार सदगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। कारण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिख्याते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ का तो ना ताई। नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन यान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसाचै लाए तराई। अपने जीता आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साज धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई। बेसमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपो काले अंधकार दीपाई। अंतरजामी जियन का दाता देख तृप त्यागाई। एक अंकार निरंजन निरपो सब जल थल रया समाई। भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई। राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारे ओ जन्म मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्रण राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो। सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास कौ दिया सगली कृष्ण उलाही संतो। रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहन ना जाई संतो। चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचे दर्श समाई संतो। गुण गावत गावत पए निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई संतो। आत्म राम रविया सवे अंतर कत आवे कत जाई संतो। आदि जुगादि हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो। मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली महला पंजवा मन बच कर्म राम नाम चितारी। कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी। जिसते लागे इतने निवारे प्रभ जीव अपनी कृपा तारी। उदरे संत परे हर सरणी पच बिन से महा अहंकारी। साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी। ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगति जो तुम्हारी। तुम समराथ्या काथा गोचर रव्या एक मुरारी। कीमत कौन करे तेरी करते
प्रभ अंत ना पारा वारी, नाम दान नानक वडियाई, तेरिया संत जना रे नारी। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजिया वादाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया, शब्दो ता गाव हरी केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होवा, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा, कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समर्थ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटा, जिस दिया ये वडियाइया। कह नानक सुनो संतो, सब धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सपागे, कर सपागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुजन कहो, से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होवा, तित कर अनहद वाजे, साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजहो, क्या करे वेचारिया। तुद बाज समर्थ कोए नाही, कृपा कर बनवारिया, एस ना होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया। कह नानक लिवै बाजहो, क्या करे वेचारिया। आनंद आनंद सबको कह, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरते, कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किलवे कटे, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मुह टुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। कह नानक हो आनंद है, आनंद गुरते जानिया। बाबा जिस तू देह सोई जन पावै, पावै ता सो जन देह जिसनो, होर क्या करे विचारिया। एक भरम भूले फिरै दै दिस, एक नाम लाग सवारिया। गुर प्रसादी मन भया निर्मल, जिन्ना पाणा पावै। कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावै, आवहो संत प्यारे हो, अकथ की करह कहानी, करह कहानी अकथ केरी, कित द्वारे पाईए। तन मन धन सब सौंप गुर को, हुक्म

महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया। कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओढ़ तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए। कर गैलीनी सजन जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कण उन्नम बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो। प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे। प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो। सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं कब पेखा गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलनहार। बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। शंत रुत सर्द अडंबरो असू कतके हर प्याह जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो। बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना। ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पय मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले द्वितीया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हार हम तुमते नाहीं दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर। शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्स पाया बिन से माया त्रोह जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया। पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो। सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत। नाद बिनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइत फल पाया हर नानक नाम पने।

ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहजो पाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त हो वै चुन ले मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सा समाले बिन साचे जग काचा तद्दै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तद्दै तूल पड़ै मुख मस्तक कंचन पहे मनूरा तन तरनी तर आप जोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुररस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंतन साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एको एक कह सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाणे इउ कर महल सियापै प्रभ नेड़ै हर दूर न जान हो एको सृष्ट सवाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सिरे वै ता गत मित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि अस्वरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनो दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम ज्योत उजाला तीन पवन में गुरु गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे उन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारण हारा इस एके का जाने पे ओ आपे करता आपे दे ओ उगवे सूर असर संघार है उचो देख शब्द विचार है ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथै सुने सोए ओह विधाता मन तन दे ओह विधाता मन मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनुआ मार रात दिनंत रह रंगराता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सो तिसी जेहा अत निरमायल सिज सेहा रैसी राम हृदय पाए अंतर शब्द साच लिवलाए रोस ना कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंग नहीं रहना।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुखोए चित वसै राचै हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजै देह खुलै एक गंड, छे अन देखो जगहंड, तू पिशाब जे सम कर जाना, बंधन काट मुक्त कर आना। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पई सिवाल। जापै आप प्रभु त्यो लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए, ज्यो पावै त्यों राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जागरहां तुद पावां, जा तू मेलै तां तुजै समावां, जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, चूर मरै देखै प्रमाद, जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा।

जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलहारे जाओ, जो उसारे सो ढांसी तिस बिन अवरना कोए, गुर प्रसादी तिस संभला तां तन दुख ना होए, हणा को मेरा

उत्तर दी जय। साच कहो तुम पार ग्रामी, तुझ क्या बैसन दी जय। जैसे जल मैं कमल निरालम, मुर्गाई नैसाणे। सुरत शब्द पव सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। रह एकांत को मन वसिया, आसा माहे निरासो। अगमा गोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच बिचारो। रोस ना की जय उत्तर दी जय, क्यों पाई गुरुद्वारो। एहो मन चलता हो सच घर बैसै।

खंडत निंद्रा अल्पाहारं नानक तत बिचारो दर्शन पेख करो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा बारह अंतर एक सरेवो खट दर्शन एक पंथा इन बिद मन समझाइए पुरखा बाहुड़ चोट ना खाइए नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत इव पाइए अंतर शब्द निरंतर मुंद्रा होमै ममता दूर करी काम क्रोध अहंकार निवारे गुर कै शब्द सो समझ परी खिंथा चोली परपुर रहया नानक तारे एक हरी साचा साहेब साची नाई परखै गुर की बात खरी ऊं दो खप्पर पंच पू टोपी काया कड़ासन मन जागोटी सत संतोख संजम है नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बाहर जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिर पवन रया समाए घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बाहर शब्द सो जुगता मन मुख बिनसै आवे जाए नानक गुरमुख साहि समाए क्यों कर बादा सरपन खादा क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा एहो तत विचार है सो गुरु हमारा दुरमत बादा सरपन खादा मनमुख होया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हम मैं मिट समाए सुन निरंतर दीजे बंद उड़े न हंसा पड़े न कंद सहज गुफा कर जाने साचा नानक साचे पावे साचा किस कारण गृह तजो उदासी किस कारण उपेख निवासी किस वखर के तुमन जारे क्यों कर साथ लंगा वो पारे गुरमुख खोइत पए उदासी दर्शन कै ताई पेख निवासी साच वखर के हम जारे नानक गुरमुख उतर सपारे कित बिद पुरखा जन्म वटाया काहे कहो तुझ एहो मन लाया कित बिद आसा मनसा खाई कित बिद जोत निरंतर पाई बिन दंता क्यों खाइए सार नानक साचा करो बिचार सतगुर कै जन्मे गमन मिटाया अनहर अनहत राते हो मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर पाई त्रै गुण मेटे खाइए सार नानक तारे तार नहार आद को कवन विचार कथिय ले सुन कहां करवासो ज्ञान की मुंद्रा कवन कथिय ले कट कट कवन निवासो काल का ठींगा क्यों जलाई अले क्यों निरपो कर जाइए सह संतो का आसन जाने क्यों शेदे बैराई है गुर कै शब्द हमें बिख मारे तानिज कर हो वै वासो जिन रच रचिया ते शब्द पछाण नानक ता का दासो कहां ते आवे कहां इहो जावे कहां इहो रहे समाई ए शब्द को जो अर्थ आवे तिस गुर तिल ना तुमाई क्यों तत्ते अवगत पावे गुरमुख लगे प्यारो आपे सुरता आपे करता कहो नानक बिचारो हुक्मे आवे हुक्मे जावे हुक्मे रहे समाई पूरे गुरते साच कमावे गत मित शब्दे पाई आद कौ बिस्माद विचार कथिया ले सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुंद्रा गुर ज्ञान विचारिया ले कट कट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाई है तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी सेवै सिखसो खोज लह हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे जी जुगत सच जाने सोई आप मेट निराल मोहवे अंतर साच जोगी कहिए सोई अवगतो निर्मायल उपजे निर्गुण ते सरगुण थिया सतगुर परचय परम पद पाईए साचे शब्द समाए लिया एक एक कहो सच एका जा

आवा गौण मिटै गुर शब्दी आपे परखे बख्स लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जमकी कान पर कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसाण शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपियै अंतर प्यार गुरमुख पाईऐ शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख तरती साचै साजी तिसमें ओपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतौ पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नामै क्यों साच समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख भव जल तरियै सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाणै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते हम मैं जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते जोग जुगत विचार नाम रते पावै मुख द्वार नाम रते त्रिपमण सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ट होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान विचार बिन नामै बोलै सब वेकार नानक नाम रते तिन कौ जयकार पूरे गुरते नाम पाया जाए जोग जोगत सच रहे समाए बारह मैं जोगी परमाए सन्यासी शे चार गुर कै शब्द जो मर जीवै सो पाए मुख द्वार बिन शब्द सब दूजै लागे देखो हृदय विचार नानक वड्डे सेवड पागी जिनी सच रखिया उतार गुरमुख रतन लह लिव लाए गुरमुख परखै रतन सुभाए गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मनपति आए गुरमुख अलख लखाए तिस पावै नानक गुरमुख चोट ना खावै गुरमुख नामदान इशनान गुरमुख लागै सहि ध्यान गुरमुख पावै दरगै मान गुरमुख पौ पंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराए नानक गुरमुख मेल मिलाए। गुरमुख शास्त्र सिमरत बेद गुरमुख पावै कटकट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मिटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर परमै आवै जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर तृप्त नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसै मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिलै तिस पार उतारै अवगुण मिटै गुण निस्तारै मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरम कदे ना आवै हार
ਤਨ ਹਟੜੀ ਉਹ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਵਾਪਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੇਤ ਬਿਧਾਤੈ, ਲੰਕਾ ਲੁੱਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਅਹਿ ਰਾਵਣ, ਭੇਦ ਬਭੀਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋੜਤੇ ਤੀ ਸਿਉਦਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਚੁੱਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿ ਧਿਆਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੈ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦ ਨਾ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਨਾਮ ਪਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਹੋਏ। ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲੇ, ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਬਾਲੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਵਜਲ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾ ਵਣਹਾਰ। ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ। ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਐ ਸਾਰ, ਜਿਤ ਗਰਬ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਣ ਆਹਾਰ। ਹਿਵੈ ਕਾ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਅਗਨ ਪਿਰਾਹਨ, ਕਵਣ ਗੁਫਾ ਜਿਤ ਰਵੈ ਰਹਿ ਅਵਾਹਨ। ਇਤ ਉਤ ਕਿਸ ਕਉ ਜਾਣ ਸਮਾਵੈ, ਕਵਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਨੈ ਸਮਾਵੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਇੱਕੋ ਹੋਵੈ। ਜਗ ਕਰੜਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਾਵਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰੇ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਅਗਨ ਮਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ। ਸੱਚ ਪੈ ਰਾਤਾ ਗਰਬ ਨਿਵਾਰੈ, ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀ ਆ।

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदर कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, करमी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म बिनास, रसना हरस ना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण, त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवै दासन दास। ताय अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबै न छोड़ै पास। ज्यों जल मैं कमल अलिप तो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै ते हर गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग वारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजिया नो, आप मत दीनी। सिमरत सास्त साजिया नो, पाप उन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्श मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, एहो तन सबो रत।

ज्यों बै संतर तात सुध होए, त्यों हर का पौ दुर्मत मैल गवाए। नानक तेजन सोहने जो रते हर रंग लाए महला तीजा। आराम कली राम मन वसिया ता बनिया सिंगार, गुर कै शब्द कमल बिकसिया ता सौंपिया भगत भंडार। परम गया ता जागया चूका अग्ञान आधार, तिसनो रूप अत्यगला जिस हर नाल प्यार। सदा रवै पिर अपना सोभावंती नार, मन मुख सिंगार ना जाननी जासन जन्म सभार। बिन हर भगती सिंगार करै नित जमै होए खुआर। संसार विच सोभ ना पाए नी अगै जे करे सो जाने करतार। नानक सच्चा एक है दोह विच है संसार, चंगा मंदा आप लाया न सो करन जे आप कराए करतार। महला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई दूजी नाही जाए। जे बहु तेरा लोची है विन कर्मा पाया ना जाए। अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए, तन जमन मरण न चुकई हम मैं विच दुख पाए। जिन्नी सतगुर स्यो चितलाया सो खाली कोई ना है, तन जम की तलब ना हो वई ना होए दुख सहाए। नानक गुरमुखी उबरे सच्चे शब्द समाहे, पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदै सब तावै। आप नि चलिया चल है होर आवै जावै, सदा सदा हर त्याई गुरमुख सुख पावै। निज कर वासा पाईऐ सच सिफत समावै, सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला।

नाम जपे नामो वारादे तिस जन कौ करो सब नमस्कार। मलकूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवड़ दाता नाही किस आख सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथों हो मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है। जिसनों बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियो न गुरमुख किसै प्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बाबाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जे सतगुर भावै सो मन लैन सही कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद। बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानक आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन। ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती। एक कूड़ को सत लायन मनमुख वेगूती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है तिन वात सपीती। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे। गुर दीख्या कर देवन जाहे। स्त्री पुरखे खटिया पाओ पावे आवो पावे जाओ। शास्त्र वेदना माने कोए आपो आपे पूजा होए। काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाए। तुरक मंत्र कन हृदय समाहे। लोक मुहावे चाड़ी खाहे चौका देके सुचा होए। ऐसा हिंदू वेखो कोए।

एहन से अंतर रहते आनो ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त को नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाव जे सम कर रह ता नानक आख गुर को कह छे वरतारे वरत पूत ना संसारी ना अवधूत निरंकार जो रह समाए काहे पीखिया मंगण जाए पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया जिथों हर जाता मानस देह गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी तिन्नी जन्म गवाता सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लखन है क्या मूर्ख का करना मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना एतक माण है सदा दुख दुखी मैं रहना अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना हर नाम जपै आप उदरे ओस पिछे डुबदे पी तरना नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना महला पहला। नानक आखैरे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही तलबा पौसने आकिया बाकी जना रही अजराइल फरेस्ता होसी आए तई आवन जान न सुजई पीड़ी गली फही कूड़ ने खुटे नानका ओड़क सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रवर या सब आपै हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै गुर प्रसादी सालाही है हर भगती रापै सब मंतन हरिया होया हंकार गवापै सब किश हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोवाया परशुराम रोवे घर आया अजय सो रोवे पीखिया खाए ऐसी दरगह मिले सजाए रोवे राम निकाला पया सीता लखमण विछड़ गया रोवे दसर लंक गवाए जिन सीता आंदी डौरू वाए रोवे पांडव पय मजूर जिनके स्वामी रहत हदूर रोवे जन्मे जा खोए गया एकी कारण पापी पया रोवे शेख मसाइक पीर अंतकाल मत लागे पीड़ रोवे राजे कन पड़ाए कर कर मांगे पीखिया जाए रोवे किरपन संचय तन जाए पंडित रोवे ज्ञान गवाए बाली रोवे नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार मन्ने नाओ सोई जन जाए औरी कर्म ना लेखै लाए महला दूजा जप तप सब किश मन्ने अवरकारा सब बाद नानक मन्या मन्नी बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल करते लिख पाया सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया गुण गावे गुण उच्चरे गुण महे समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किश आपे आप है आपे दे वड्याई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला दूजा नानक अंधा होए कै रतना परखण जाए रतना सार ना जाणई आवै आप लखाए। महला दूजा
रतना केरी गुथली रतनी खोली आए वखर तैवन जारिया दुहा रही समाए जिन गुण पल्ले नानका माणक वन जैसे रतना सार न जानई अंधे वत्तै लोए पौड़ी नौ दरवाजे काया कोट है दसवै गुप्त रखी जय बजरक पाट न खुलनी गुर शब्द खुली जय अनहद वाजे धुन वज दे गुर शब्द सुनी जय तित काटो अंतर चानना कर भगत मिली जय सब मैं ए

रामकली की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएं दा कटे हो मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवां एक सज्जनों सब सज्जना एक वैरी सब वा

कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहेब आप गुरमुख प्रगटिया। श्लोक महला पंजवा। सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हौं तिस सेवी हौं तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एक सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सदही वरतै नाल। महला पंजवा। मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तो है कोई ऐसा सज्जन लोड लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरै मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए पौड़ी। देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोई ना किसी वस सबना एक तार पाले बालक वांग देखे आप कर। करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है सर्वतार समरथ हौं तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवा। भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंबे नाल कार्ज आप सवारियान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा। विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख पौड़ी। सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल धरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा। तन सो राग सुरंगड़े अलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे ना। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सद बलिहारै जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रत्ते रंग गोविंद कै हौं सद बलिहारै।

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी विच दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपव सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सोथियई जिसनो तेरी मया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुर ते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा जपी।

माधाना पर्वत कर नेत्र बासर माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रतन निकाल्योन कर आवा गौण चिलक्योन कुदरत है वे खालियान जिन एवड पिंड ठिणक्योन लहणे तर उन छत्र सिर असमान के आड़ा शिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप पैसे ती मिक्योन सिखा पुत्रा कोख कै सब उम्मत वेखो जेक्योन जांस दोस्ता लहणा टिक्योन फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर लब विनाहे मानसा ज्यो पानी बूर वरे अदर गै गुरु की कुदरती नूर जित सुहाथ ना लबई तू ओ ठरूर नौनिद नाम निधान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो मन्ये चूर नेड़ै दिसै मात लोक तू सुजै दूर फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर सो टिका सो बहना सोई दीवान पिउ दादे जिवेहा पोता प्रमाण जिन बासक नेत्रै कतिया कर नेही तान जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान चौदह

माय ना होती, बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कवन कहां ते आया। राम कोई न किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ। चांद ना होता, सूर ना होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता, वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करै, उल्ट तीर्थ मरै, अगन दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भदान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना की जय, हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जौ गोदावर जाइय, कुंभ जौ केदार नाइय, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करै, तन जौ हिवाले गारै, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ निर्मायल की जय, आप बराबर कंचन दी जय, राम नाम सरतऊ न पूजै। मने न की जय रोस, जमे न दी जय दोस, निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जथ रथ राय नंद, राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत्रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्श। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारस नाम परस। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बाडो कब कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबे ना नासी। कहो रविदास समय सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसाए कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहा निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहा निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी, तह बाजे सबद्या नाहद बाणी, तह चांदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै। एस कला जो जाने पे ओ, पेटे तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगमया पारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रहे सो कवो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै, बीज मंत्र लै हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रह न अलिया पख, पांचो इंद्री बस कर रख, गुर की साखी राख चीत, मन तन अर्प कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म न जुए हारे। असर नदी का बंदे मूल, पच्छम फेर चढ़ावे सूर। अजर जरै सो निजर चरै, जगंग नास्यो गोष्ठ करै। चौ मुख दीवा जो द्वार, पलू अंत मूल बिचकार। सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामे गुहै। मस्तक पद्म द्वाले मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी। पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर संख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान,
ਬੇਣੀ ਜਾਚੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਰਾਗ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ।

मेरे मानो जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दोख भव कीने, सब पर हर पास धरे रहाओ। हर हर नाम जप आराध्य सेवक पाए खरे, किल बिख दोख गए सब निकर, ज्यो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावै, मुख बोले नर नर हरे। पंच दोख असाध नगर मैं, एक खिन पल दूर करे। वडभागी हर नाम ते आवै, हर के भगत हरे। तिनकी संगत देह प्रभ जाचौ, मैं मूढ़ मुग्ध निस्तरे। किरपा किरपा धार जग जीवन, रख ले वो शरण परे। नानक जन तुमरी शरणाई, हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा, राम जप जन रामै नाम रले। राम नाम जप्यो गुर बचनी, हर तारी हर कृपले रहाओ। हर हर अगमय गोचर स्वामी, जन जप मिलो सलल सलले। हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन कै बल बलले। परखोत्म हर नाम जन गायो, सब दालद दुख दलले। विच देही दोख असाध पंच तातु, हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई, जो देखे सस कमले। उनमें कान कान कान हर गरजे, मन बिकसे मोर मुरले। हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीवे देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाए, हर मेलो अंध भले। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे। गुर प्रसादी हर नाम ते आयो, हम सतगुर चरण पखे रहाओ। उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो, हम पापी शरण रखे। तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो, हर दियो नाम मुखे। हर गुणी ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे। जो चंदन संग बसे निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे। हमरे अवगन बिखिया बिखे के, बहु बार बार निमखे। अवगन आरे पाथर पारे, हर तारे संग जनखे। जिनको तुम्हार रखो स्वामी, सब तिनके पाप क्रिखे। जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी, तुम दुष्ट तारे हरण खे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर राम रंगे। हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ। जन्म जन्म के भूल चूक, हम अब आए प्रभ शरणगे। तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हम राखो वड पापगे। तुमरी संगत हर को ना उधरियो, प्रभ किए पतत पवगे। गुण गावत शिपा दुष्टारियो, प्रभ राखी पैज जनगे। जो तुमरे गुण गावे स्वामी, हाँ बल बल बल तिनगे। पवन पवन पवित्र सब किए, जह तूर परी जन पगे। तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम, तुम वड वड पुरख वडगे। जन नानक कहो दया प्रभ धारो, हम सेवै तुम जन पगे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम मने। जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी, मत गुरमत नाम बने रहाओ। हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने। किलबिख नाम किलबिख पाप नाम हर काटे, जब खेत किरसान लुने। तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो, हम कह ना सके हर गुने। जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही, गुण जानो प्रभ अपने। माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने। ज्यो जल कुंचर तंदुए बंदे हो, हर चेत्यो मोख मुखने।

आठ पहर गुण गायण रहाओ, साधु तूर करो नित मजन, सब किल विख पाप गवायण, पूर्ण पूर्ण रहे कृपा निद, घट घट दिष्ट समायण। जाप ताप कोट लख पूजा, हर सिमरन तुल ना लायण, दोए कर जोड़ नानक दान मांगे, तेरे दासन दा दसायण। नट महला पंजवा, मेरा सर्वस नाम निदान, कर कृपा साधु संग मिलो, सतगुर दीनो दान रहाओ। सुखदाता दुख पंजन हारा, गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान, काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने, बिनस्यो मूड अभमान। क्या गुण तेरे आख वखाना, प्रभयंत्र जामी जान, चरण कमल सरन सुख सागर, नानक सद कुरबान। नट महला पंजवा, हाँ वार वार जाओ गुर गोपाल रहाओ, मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते, दीना ना दयाल, उठत बैठत सोवत जागत, जी प्राण तन माल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, नानक दर्शन हाल। नट पड़ताल महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। को है मेरो साजन मीत, हर नाम सुनावे नीत, बिनसै दुख विपरीत, सब अर्पो मंतन जीत रहाओ। कोई विरला अपन कीत, संग चरण कमल मन सीत, कर कृपा हर जस दीत, हर पाज जन्म पदार्थ जीत। कोट पतत होहे पुनीत, नानक दास बल बल कीत। नट अष्टपदिया महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। राम मेरे मंतन नाम आधारे, खिन पल रह न सको बिन सेवा, मैं गुरमत नाम सुमारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन त्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पहे प्रभ ठाकर, गुर के शब्द सवारे। मधुसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकर अगम अपारे, एक बिनो बेनती करो गुर आगे, मैं साधु चरण पखारे। सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कहो, प्रभ एको पुरख निरारे, सहस मूर्त एको प्रभ ठाकर, प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उरतारे, हर हर कथा बनियत मीठी, ज्यो गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे, अत फीके लोभ बेकारे, जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अनरस साध बिसारे। गुरमत राम नाम तन पाया, सुन कहत्या पाप निवारे। धर्म राय जम नेड़ ना आवे, मेरे ठाकुर के जन प्यारे, सास सास सास है जेते, मैं गुरमत नाम समारे। सास सास जाए ना मैं बिन, सो बिरथा सास बेकारे। कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरणी, मोको हरजन मिल प्यारे, नानक दासन दास कहत है, हम दासन के पनिहारे। नट महला चौथा, राम हम पाथर निर्गुणियारे, कृपा कृपा कर गुरु मिलाए, हम पहन शब्द गुर तारे रहाओ। सतगुर नाम दृढ़ा यत मीठा, मैला गर्म लगारे, ना मैं सुरत वजी है दय दसो, हर मुस्की मुसक गंधारे। तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी, गुरनी के बचन समारे, गावत गावत हर गुण गाए, गुण गावत गुर निस्तारे। बबेक गुरु गुरु समदर्शी, तिस मिलिया संको तारे, सतगुर मिलिया परम पद पाया, हों सतगुर कै बलिहारे। पाखंड पाखंड कर कर परमे, लोभ पाखंड जग बुरियारे, हलत पलत दुखदाई होवे, जमकाल खड़ा सिर मारे। उगवे दिन सियाल जल संभाले, बिख माया के बिस्थारे, आई रहन पया सुपनंतर, बिख सुपने पी दुख सारे। कलर खेत लै कूड़ जमाया, सब कूड़े के खलवारे, साग तनार सब पुख पुखाने, दर ठंडे जम जंदारे। मनमुख कर्ज चढ़िया बिख पारी, उतरे शब्द विचारे, जितने कर्ज कर्ज के मंगिए, कर सेवक पग लगवारे। जगन्नाथ सब जंतर उपाए,
ਨੱਕ ਖੀਨੀ ਸਭ ਨੱਥ ਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਖਿੰਚੈ ਤਿਵ ਚੱਲੀਐ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਰਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੱਜਨ ਹੈ ਨੀਕੋ, ਮਿਲ ਕਰਮਲ ਪਾਪ ਉਤਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ ਸੂਬਾ ਗਨ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਪਰਸਨ ਪਰਸ ਭਏ ਕੁਬਜਾ ਕਉ, ਲੈ ਬੈ ਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਕੀਨੀ, ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਕੈ ਮਨ ਭਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬੇਦਾਰੇ। ਮਾਨੁਖ ਕਥੈ ਕਥ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ, ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਵੈ, ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਬ ਲਗ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਬਤ, ਤਬ ਲਗ ਕਿਛ ਨਾ ਸੁਮਾਰੇ। ਜਬ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਅੱਗ ਲਗਾਨੀ, ਕੱਢ ਕੂਪ ਕੱਢੈ ਪਨਿਹਾਰੇ, ਸਾਗਰ ਸਿਉਮਨ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰੀਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਕਤ ਬਚਨ ਵਿਸ਼ੂਆ ਜਿਉਂ ਡਸੀਐ, ਤਜ ਸਾਕਤ ਪਰੈ ਪਰਾਰੇ। ਲਗ ਲਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਲਗ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪਰਚੂਨ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਰਸ ਗਾਵੈ

क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा राम गुर सरन प्रभु रखवारे। ज्यो कुंचर तंदुऐ पकड़ चलायो, कर उपर कढ निस्तारे रहाओ। प्रभ के सेवक बहुत तनीके, मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभ सरदा भगत मन भावै, जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागै, सब देखै ब्रह्म पसारे। एक पुरख एक नदरी आवै, सब एका नदर निहारे। हर प्रभ ठाकर रव्या सब ठाई, सब चेरी जगत समारे। आप दयाल दया दान देवै, विच पाथर कीरे कारे। अंतरवास बहुत मुस्काई, प्रमपूला मिर्ग सिंघारे। बन बन ढूंढ ढूंढ फिर थाकी, गुरपूरै कर निस्तारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया, मन बीजिया खावारे। ज्यों जन चंद्रहांस दुखिया त्रिष्ट बुद्धि, अपना कर लुकी जा रे। प्रभ को जन अंतर रिद लोचै, प्रभ जन के सास निहारे। कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए, जन पीछे जग निस्तारे। अपने आप प्रभ ठाकर प्रभ आपे सृट सवारे। जन नानक आपे आप सवरतै, कर कृपा

नट महला चौथा। मेरे मन भाई ठाकर अगम अपारे, हम पापी बहु निर्गुण यारे, कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे। राम नाम तन पूंजी देवो, सब तिशना भूख निवारे। पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे। पंच भूत सबल है देही, गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सो देखे, मुन नारद बचन पुकारे। राम नाम पढ़ो गत पावो, सतसंगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे। मेर सुमेर मोर बहु नाचे, जब उनवे कहन कनहारे। साकत कौ अमृत भौ सिंचौ, सब डाल फूल बिस्कारे। ज्यों ज्यों निवै साकत नर सेती, छेड़ छेड़ कढै बिख खारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोलै पर उपकारे। संत है संत मिलै मन बिकसै, जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हल्क है, हल्क्यो सब बिगारे। मेरे ठाकर कह दीबान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारे। राख राख राख प्रभ मेरे, मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर गुर ने

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख लियो तराया हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया पौ जन मर निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया हर हार हर उतारे ओ जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मनो राम नाम सुखदाता सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता लिलाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंत्र राता हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब के लिख पाप गवाता राम रसायन।

गया सो जो बनो तन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पणत नानक अंदेसा यही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सुपागा, गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई। रहाओ मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया, पिए ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ, लून हरामी नानक लाला, बख्शै तुद वडियाई, आज जुगा दया पदाता, तुद बिन मुक्त ना पाई।

तौ देवा ना जानिए जा एकाकार कमाए हुक्म पछाण खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ देवा ना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला एहो तन सरबरया भरपूर मनुख फिरै से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा जिस तू देहे।

हेत के बंधन तोड़ ना साके ता जम करे खुआरी जियो। ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुर दिया। जिस तू देह तसे क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो। मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जह बैसाल तै बैसा स्वामी जय भेजै तै जावा। सब नगरी मैं एको राजा सबे पवित है थावा। बाबा देह वसा सच गावा जाते सहजे सही समावा रहाओ। बुरा भला किश आपस ते जानिया ए सगल विकारा। एहो फरमाया खसम का होवा वरतै ओ संसारा। इंद्री ता तो सबल कहियत है इंद्री किस्ते होई। आपे खेल करे सब करता ऐसा बुझे कोई। गुरप्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बिनासी। ज्योतिष पाणा सो सतकर्मा नया काटी जमकी फासी। पणत नानक लेखा मांगे कवना जा चूका मन अभमाना। तास तास धर्म राय जपत है पै सच्चे की सरना। मारू महला तीजा आवन जाना ना थी निज करवासा होए। सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए। ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार। गुर कै शब्द ते आए तू ता सच लगी प्यार रहाओ। एथे नावो भुलिया फिर हथ कथाऊ ना पाए। जोनी सब पवाईयन बिष्टा माए समाए। वडभागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए। अंदर सच्ची भगत कर सच्चा ले मिलाए। आपे सृष्ट सब साजिया नू आपे नजर करे। नानक नाम वड़ियाईया जय भावें तैं दे।

हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम ते आई हर कीर्त गुरमुख चाख तन धरती हर बीजी है विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपूरे हर अस चाख मन मुख तृष्णा भर रहे मन आसा दह दिस बहु लाख बिन नामै त्रिग जीवन दे विच विष्टा मन मुख राख होए आवै जाए पवाई है बो जोनी दुर्गंध पाख त्राहे त्राहे शरणागति हर दया तार प्रभ राख संत संगत में लाभ कर हर नाम मिले पत साख हर हर नाम तन पाया जन नानक गुरमत पाख मारू महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर भगत भरे भंडारा गुरमुख राम करे निस्तारा जिसनों कृपा करे।

अड़े जप हर हर नाम छड़ावै जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरा मन भावै जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत मन लै जावै जियो माया मोह बिखम है भारी क्यों तरिया दुत्तर संसारी सतगुर बोहिथ दे प्रभ साचा जप हर हर पार लंघावै जियो तू सरबत्र तेरा सब कोई जो तू करै सोई प्रभ होई जन नानक गुण गावै बेचारा हर पावै हर थाए पावै जियो मारू महला चौथा हर हर नाम जपो मन मेरे सब किल विख काटै हर तेरे हर तन राखो हर तन संचो हर चलद्या नाल सिखाई जियो जिसनो कृपा करे सो त्यावै नित हर जप जापै जप हर सुख पावै गुर प्रसादी हर रस आवै जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निरभउ निरंकार।

कामा मिट गई सगली ताई, अब मोहे जीवन पदवी पाई। जीत आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बैर आई। सद हजूर हाजर है नाजर, कत न पयो दूराई। सुख शीतल सरदा सा पूरी, होए संत सहाई। पावन पतत किए खन पीतर, महिमा कथन न जाई। निरपो पय सगल पै खोए, गोबिंद चरण उठाई। नानक जस गावे ठाकर का, रहन दिन सलिवलाई। मारू महला पंजवा, जो समरथ सर्व गुण नायक। तिसको कबो न गाव सिरे, छोड़ जाए खिन पीतर ता कौ। ओआ कौ फिर ताव सिरे, अपने प्रभ को क्यों ना समार सरे। बैरी संग रंग रस रचिया, तिस्यों जियरा जार सरे रहाओ। जा कै नाम सुनिया जम छोड़ै, ताकी सर ना पाव सरे। काड़ दे स्याल बपरे कहो, ताकी ओ टिकाव सरे। जिसका जास सुनत पवतरी है, ता स्यो रंग ना लाव सरे। थोरी बात अल्प सुपने की, बहुर बहुर अटकाव सरे। पयो प्रसाद कृपा निध ठाकर, संत संग पत पाई। कहो नानक त्रै गुण प्रम छूटा, जौ प्र पय सहाई। मारू महला पंजवा, अंतर जामी सब जानै, तिस्ते कहां दुलारे हो। हस्त पाव चरेखिन पीतर, अग्न संग लै जा रहे हो। मूड़े तै मनते राम बिसारे हो, लून खाए करे हराम खोरी। पेखत नैन बेदारे हो रहाओ, असाध रोग उपजो तन पीतर। टरत ना काहू टारे हो, प्रभ बिसरत महा दुख पायो। एहो नानक तत बिचारे हो। मारू महला पंजवा, चरण कमल प्रभ राखे चीत। हर गुण गावे नीता नीत, तिसबिन दूजा अवर ना को। आद मद अंत है सो, संतन की ओट आपे आप रहाओ। जा कै वस है सगल संसार, आपे आप आप निरंकार। नानक गयो साचा सोए, सुख पाया फिर दुख ना होए। मारू महला पंजवा कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्राण सुखदाता जी सुखदाता, तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर, दुलभ जन्म आकारथ। रे नर ऐसी करे अयानथ, तज सारंग धर भ्रम तू पूला। मोहे लपट्यो दासी संगसानथ रहाओ। धरणी धर त्याग नीच कुल सेवै, हाँ करत बिहावथ। फोकट कर्म करे अज्ञानी, मनमुख अंध कहावत। सत होता असत कर मानिया, जो बिनसत सो निचर जानथ। पर की कौ अपनी कर पकरी, ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, सब एक नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है, जो सुने सो पार परानथ। मारू महला पंजवा, गुप्त करता संग सो प्रभ। डहकावे मनुखाए, बिसार हर जियो बिखै भोगै। तपत थम गल लाए, रे नर काए पर ग्रह जाए। कुचल कठोर काम गर्दप, तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ। बेकार पाथर गले बांधे, निंद पोट सिराए। महासागर समुंद लंघना, पार ना पर ना जाए। काम क्रोध लो मोहे ब्यापे, नेत्र रखे फिराए। शीश उठावन ना

सगल ले शलिया निर्भव निरंकार दयालिया जी जंत सगले प्रतपलिया रहाओ। एक है श्रम कर गाडी गढ़ है एक है सुपन है दाम ना छड है राज कमाए करी जिन थैली ता कह संग न चंचल चलिया। एक है प्राण पिंड ते प्यारी एक संची तज बाब महतारी सुत मीत प्राते गुहजी ता कह निकटना होई खलिया। होए अदूत बैठे लाए तारी जोगी जति पंडित बिचारी ग्रे मड़ी मसानी बन मैं बसते ऊठ तिना कह लागी पलिया। काटे बंधन ठाकर जाके हर हर नाम बस्यो जीता कै साध संग पहे जन मुक्ते गत पाई नानक नदर निहलिया। मारू महला पंजवा सिमरो एक निरंजन सोउ जाते बिरथा जात ना को मात गर्व मैं जिन प्रत पारिया जियो पिंड दे साई सुवारिया। सोई विधाता खिन खिन जपिए जिस सिमरत अवगुण सब ठकी है

पूर्ण अत्र त्याग आए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवां कर छेवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्यागुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम गुरप्रसाद नानक बखाना हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेह मेरे मन नाम नित नित लेह जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देह रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह। मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुखै दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल दीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीद नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार। मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसे प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नमा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदपो हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राख लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राख बूध बूझ बुद्ध बबेक मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जिंतु किया प्रभ करण करने एक रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा पतत पावन

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरो ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख महा गोबारे सास सास माले सोई उथे खसम छड़ाए लया विचों गर्भ निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथि थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन्म पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई भैनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे घट घटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी ना

मारू महला पहला लालै गर्भ छोड़िया गुर कै पैसा सुभाई लालै खसम पछाणिया वड्डी वड्याई खसम मिलिया सुख पाया कीमत कहन ना जाई लाला गोला खसम का खसम वड्याई गुर प्रसादी उबरे हर की सरनाई रहाओ लाले नो सरकार है तुर खसम फुरमाई लालै हुकुम पछाणिया सदा रह रजाई आपे मीरा बख्श ले वड्डी वड्याई आप सच्चा सब सच है गुर शब्द बुझाई तेरी सेवा सो करे जिसनो लह तू लाई बिन सेवा कने ना पाया दूजे परमुख वाई सो क्यों मनो विसारी है नित देवे चढ़ै सवाया जियो पिंड सब तिसदा साहो तिने विच पाया जा कृपा करे तां सेवी है सेव सच समाया लाला सो जीवत मरै मर विचों आप गवाए बंधन टूटै मुक्त होए तृष्णा यगन बुझाए सब मैं नाम निधान है गुरमुख को पाए लाले विच गुण किश नहीं लाला अवगणियार तू जीवड़दाता को नहीं तू बख्शनहार तेरा हुक्म लाला मन्ने एह करनी सार गुर सागर अमृत सार जो इच्छे सो फल पाए नाम पदार्थ अमर है हृदय मन वसाए गुर सेवा सदा सुख है जिसनो हुक्म मनाए सोयना रूपा सब धात है माटी रल जाई बिन नावे नाल न चलई सतगुर बूझ बुझाई नानक नाम रते से निर्मले साचे रहे समाई मारू महला पहला हुक्म पया रहना नहीं तुर फाटे चीरै एहो मन अवगुण बांधिया सौ दे शरीर है पूरे गुरबख्साई है सब गुणै फकीर है क्यों रही है उठ चलना बो शब्द विचारा जिस तू मिले सो मिले तुर हुक्म अपारा रहाओ ज्यों तू राखै त्यों रहा जो देह सो खाओ ज्यो तू चलावै त्यों चलना मुख अमृत नाओ मेरे ठाकर हथ वड्याईया मेले मन चाओ कीता क्या साला ही है कर देखै सोई जिन किया सो मन वसै मैं अवर ना कोई सो साचा साला ही है साची पत होई पंडित पढ़ना पहुंचई बहुआल जंजाला पापुन दोए संग में खुदिया जमकाला विछोड़ा पहु विसरै पूरा रखवाला जिनकी लेखै पत पवै से पूरे भाई पूरे पूरी मत है सच्ची वड्याई देंदे तोट ना आवई लै लै थक पाई खार समुंदर टंडोली है इक मणिया पावै दोए दिन चार सुहावना माटी तिसखावै गुरसागर सत सेवी है दे तोट ना आवै मेरे प्रभावन से उजले सब मैल भरीजै मैला उजल तां थीऐ पारस संग पीजै वन्नी साचे लाल की किन कीमत कीजै पेखी हाथ न लभई तीर्थ नहीं दाने पूछो बेद पणंतिया मूठी विणमाने नानक कीमत सो करे पूरा गुर ज्ञाने मारू महला पहला मन मुख लहर कर तज विगूचे अवरा के कर हेरै गृह धर्म गवाए सतगुर ना पेटै दुरमत घूमन के रह दिसंतर पवै पाठ पढ़ थाका तृष्णा होए वधेरै काची पिंडी शब्द ना चीनै उधर भरै जैसे ढोरै बाबा ऐसी रवतर वै सन्यासी गुर कै शब्द एक लिवला

सोई सोहेला पालिया ग्रह राज में नरको दास करो दा बहुविध वेद पाठ सब सोदा देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहलिया जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त ना होई है मीता साध संग तुटे हो बंधन एको एक निहाली है कर्म करे ता बंदा नह करे ता निंदा मोह मगन मन व्यापिया चिंदा गुर प्रसाद सुख दुख समझाण घट घट राम हाली है संसार में सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै जिसे बुझाए सोई बूझै ओह बालक वांगी पाली है छोड़ बह तो छूटै नाही जो सिंचै तो पौ मन माही इस ही मह जिसकी पत राखै तिस साधु चौर ढाली है जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल मानै बुझ हुक्मै दुरमत जाली है जित जित लावै तित तित लगना कर कर वेखै अपने जचना नानके पूर्ण सुखदाते तू देहता नाम समाली है मारू महला पंजवा बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त्या दोत पया उठ चले ज्यों ज्यों औद विहानिया पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजरा ईल फड़े फड़ कुठे दोजग पाए सृजनहार है लेखा मंगे बाणिया संग न कोई भैया बेबा माल जोबन धन छोड़ वंजेसा करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े जो कहानियां खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे फिर जमे बहुत सजाए पया देस लम्मे जिन कीता तिसे न जानी अंदा ता दुख सहै प्राणिया खालक था वो पुला मुठा दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा सिदक सबूरी संतन मिलियो वत्तै अपन पाणिया मौला खेल करे सब आपे एक अड्डे एक लहर वे आपे ज्यों नचाए त्यों त्यों नचन सिर सिर किरत विहाणिया मेहर करे ता खसम ते आई संता संगत नरक ना पाई अमृत नाम दान नानक कहो गुण गीता नित वखाणिया मारू सोल हे महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद साचा सच सोई अवर ना कोई जिन सिर जीत नहीं फुन गोई ज्यो पावै त्यो राखो रहना तुम स्यों क्या मुकराई है आप यो पाए।

आपे पौन पाणी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है ना साकै साचे सो लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिनस आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किसी ही कस बक्से आपे दे ले पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है, पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया।

जैसी फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपो ताड़ी लाई है। खाणी बाणी तुझै समाणी, जो दिसै सब आवन जानी, सही सह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है। शब्द बुझाए सदगुर पूरा, सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू, ना तिस दिल ना तुमाई है। काल विकाल पहे देवाने, शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरगम ज्ञाना, जो दिसै तुझ महे समाना, नानक नीच।

साजे गुण प्रगासन जति सती संतोखी आपे आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेख कोई न मिटे साचे लिख है। आपे करे कराए आपे आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चल है पार कर जो है कर नहीं पल है। काया नगर टह टह टेरी बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूझै त्रिपवन सूझै मनसा मार मन ऐसो लूझै। जो तुद सेवै से तुद ही जेहे निरपो बाल सिखाई है। आपे सुरग मछ पयाला आपे जो सुरूपी बाला जटा बिकट बिकराल सुरूपी रूप ना रेख्या काई है। वेदक ते भी भेद ना जाता ना तिस मात पिता सुत प्राता। सगले सैल्यो पाए समाए अलख ना लखना जाई है। कर कर था की मीत कनेरे कोई ना काटे अब गुण मेरे। सुर नर नाथ साहेब सब ना सिर पाए मिले पौ जाई है। भूले चूके मार्ग पावे या भुलाए तू है समझावे।

द्वारा गंगा सागर बेणी संगम 68 अंक समाई है। आपे सिद्ध साधक विचारी, आपे राजन पंचाकारी, तख्त बह अदली प्रव आपे, परम भेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला, आप अभुल ना कबहू भुला, आपे मेहर दया पदाता, ना किसै को बैराई है। जिस बख्शे तिस दे वडियाई, सब सह दाता तिल ना तुमाई, भरपुर धार रहा ने केवल, गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या साला ही अगमया पार, साचे सृजन हार मुरार, जिसनो नदर करे तिस मेले, मेल मिलै मेल आई है। ब्रह्मा बिश्रम हेस द्वार है, उबे सेवै लख्या पार है, होर केती दर दिसै बिल लांदी, मैं गणतना आवै काई है। साची कीर्त साची बाणी, होर ना दिसै बेद पुराणी, पूंजी साच सच्चे गुण गावां, मैं तर होर ना काई है। जुग जुग साचा है पी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी, नानक नीच कह बेनंती, दर देखो लिवलाई है। मारू महला पहला, दूजी दुरमत अन्नी बोली, काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने शोहर, बिन पर नींद न पाई है। अंतर अगन जलै पड़क हारे, मनमुख तके कुंडा चारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाई है, साचे हाथ वडाई है। काम क्रोध अहंकार निवारे, तस्कर पंच शब्द संघारे, ज्ञान खड़गलै मन स्यों लूजै, मनसा मन समाई है। मां की रकत पिता बिंद तारा, मूर्त सूरत कर पारा, जोत दात जेती सब तेरी, तू करता सब ठाई है। तुझ ही किया जमन मरना, गुरते समझ पड़ी क्या डरना, तू दयाल दया कर देख, दुख दर्द शरीर हो जाई है। निज कर बैस रहे पौ खाया, तावत राखे ठाक रहाया, कमल विगास हरे सर सुबर, आत्म राम सिखाई है। मरण लिखाए मंडल में आए, क्यों रही है चलना परथाए, सच्चा अमर सच्चे अमरापुर, सो सच मिलै वडाई है। आपो पाया जगत सबाया, जिन सिर आत तंदै लाया, सच्चे ऊपर अवर ना दिसै, साचे कीमत पाई है। ऐथे गोयलड़ा दिन चारे, खेल तमाशा तंदूकारे, बाजी खेल गए बाजी गर, जो निस सुपने पखलाई है। तिन कौ तख्त मिली वडियाई, निरपो मन वसिया लिवलाई, खंडी ब्रह्मंडी पाताली पुरी, त्रिपवन ताड़ी लाई है। साची नगरी तख्त सचावा, गुरमुख साच मिलै सुख पावा, साचे साचे तख्त वडाई, हों मैं गणत गवाई है। गणत गणीय सह साजी है, क्यों सुख पावै दूवै तीय, निर्मल एक निरंजन दाता, गुरपुरे ते पत पाई है। जुग जुग विरली गुरमुख जाता, साचा रव रहा मन राता, तिसकी ओट कही सुख पाया, मंत्र मैल न काई है। जीव रसायन साचै राती, हर प्रभ संगी पौ न प्राती, श्रवण स्रोत रजे गुरबाणी, ज्योति ज्योत मिलाई है। रख रख पैर तरे पौ तरना, जत कत देखो तेरी सरना, दुख सुख देहे तू है मन पावै, तुझ ही स्यो बने आई है। अंत काल को बेली नाही, गुरमुख जाता तू सालाही, नानक नाम रते बैरागी, निज कर ताड़ी लाई है। मारू महला पहला, आज जुगादी अपरे अपार है, आद निरंजन खसम हमार है, साचे जो जुगत विचारी, साचे ताड़ी लाई है। केतड़े आ जुग तुंदूकार है, ताड़ी लाई सृजनहार है, सच नाम सच्ची वड्याई, साचे तख्त वडाई है। सत जुग सत संतोख सरीरा, सत सत वरतै गहर गंभीरा, सच्चा साहिब सच परखै, साचा हुक्म चलाई है। सत संतोखी सतगुर पूरा, गुर का शब्द मने सो सूरा, साची दरगह साच निवासा, मानै हुक्म रजाई है।
ਸਤਿਯੁਗ ਸੱਚ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਸੋਈ। ਮਨਮੁਖ ਸਾਚ ਪਰਮ ਪਉ ਭੰਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਧਰਮ ਕਲਾ ਇੱਕ ਚੁੱਕੀ, ਤੀਨ ਚਰਨ ਇੱਕ ਦੁਬਦਾ ਸੂਕੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੈ, ਮਨਮੁਖ ਬਚੈ ਅਵਾਈ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕਦੇ ਨਾ ਦਰਗੈ ਸੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਕਿਉ ਅੰਤਰ ਰੀਜੈ। ਬਾਂਧੇ ਆਵੈ ਬਾਂਧੇ ਜਾਵੈ, ਸੋਜੀ ਬੂਝਣਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੁਆਪਰ ਅੱਧੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਚੀਨੈ ਕੋਈ। ਦੋਏ ਪੱਗ ਧਰਮ ਧਰੇ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਤਿਥਾਈ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਕਰੈ ਪਰਥਾਏ, ਆਸਾ ਬੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰਾਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਥਾਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਮੁਕਤ ਮੰਗਾਹੀ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੀ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰਮਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਛੋਡੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਸੇ ਛੂਟੇ ਸਚਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਅਹਿਨਿਸ ਭਗਤ ਰਤੇ ਵਿਚਾਰੀ, ਠਾਕਰ ਸਿਉ ਬਣਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਕਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ, ਜਿਉ ਤੁਦ ਪਾਵੈ ਤਵੈ ਚਲਾਵੈ। ਹੱਠ ਨਿਗਰੈ ਅਪਤੀਜ ਨਾ ਭੀਜੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਗੁਰ ਕਿਨ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲ ਰਾਖੀ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿਨੈ ਨਾ ਭਾਖੀ। ਮਨਮੁਖ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਿਰੰਦਾ, ਨਾ ਜਮ ਕਾਣ ਨਾ ਛੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਸੇਵੇ ਸੋ ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾ ਤਿਸ ਕਾਲ ਸੰਤਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੈ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟਾ ਸੰਖ ਉਧਾਰੇ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ, ਨਿਰਭਉ ਮੈਲ ਨਾ ਕਾਈ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਜਾਚੈ ਗੁਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲਾਖਿਆ ਪਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚੈ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਸਾਚ ਰਜਾਈ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਾਚੇ ਮੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਸਹਿ ਸਮਾਏ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋ ਧਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਚਾਕਰ ਤਿਸਕੀ ਸੇਵਾ, ਸਬਦ ਪਤੀਜੈ ਅਲਾਖਿਆ ਭੇਵਾ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਬਖਸ਼ ਲਏ ਵਡਿਆਈ ਹੈ।

जो जन्मे ते सर परमरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग विजोग मेरे प्रभ की ए, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पै निराले, गुरमुख सीर सनाहा हे। नीके साचे केवा पारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चै ओ महा हे। काची समी टोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रास सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोलै अपन भाणै, मनमुख दूजे बोल न जाणै। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता हे। दुख मैं जन्मै

सुन कलाय परंपर धारी आप निरालम अपर अपारी आपे कुदरत कर कर देख सुनो सुन उपाएगा पौन पानी सुन ते साजे सृष्टि उपाए काया गणराजे अग्न पानी जियो जो तुम्हारी सुन्ने कला रहाएगा सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाए सुन्ने वरते जुग सबाए इस पद विचारे सो जन पूरा तिसमलिया परम चुकाएगा सुनो सप्त सरोवर थापे जिन साजे विचारे आपे तित सतसर मनुआ गुरमुख नावै फिर बाहुड़ जो न पाएगा सुनो चंद सूरज गैनारे तिसकी जोत त्रिपमन सारे सुन्ने अलख अपार निरालम सुन्ने ताड़ी लाएगा सुनो धरत आकाश उपाए बिन थम्मा राखे सच कल पाए त्रिपवन साज मेखली माया आपो पाए पाएगा सुनो खाणी सुनो बाणी सुनो उपजी सुन समाणी उत पुज चलत की आसर करत बिस्मा सब देखाएगा सुनो रात दिन सदुए किए ओपत खपत सुखा दुख दिए सुख दुख ही ते अमरा तीता गुरमुख नि कर पाएगा साम वेद रिग जुजर अथर बन ब्रह्मे मुख माया है त्रैगुण ता की कीमत कह ना सके को त्यों बोले ज्यो बोलाएगा सुनो सबत पता लियो पाए सुनो पवन रखे लिवलाए आपे कारण किया अपरंपर सब तेरो किया कमाएगा रज तम सतकल तेरी छाया जन्म मरण हमे दुख पाया जिसनो कृपा करे हर गुरमुख गुण चौथे मुक्त कराएगा सुनो उपजे दस अवतारा सृष्टि उपाय की आपा सारा देव दानव गण गंधर्व साजे सब लिखिया कर्म कमाएगा गुरमुख समझे रोग ना होई ए गुर की पौड़ी जाने जन कोई जुगै जुगंतर मुक्त परायण सो मुक्त भया पत पाएगा पंच तत् सुनो प्रगासा देहा संजोगी कर्मा अभ्यासा बुरा भला दो मस्तक लिखे पाप पुन भी जाएगा उत्तम सतगुर पुरख निराले शब्द रते हर रसमत वाले रिद बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाई है पूरे पाग मिलाएगा इस मन माया को नेहो कनेरा कोई बुझो ज्ञानी करो नवेरा आसा मनसा हो मैं सहसा नर लोभी कूड़ कमाएगा सतगुर ते पाए विचारा सुन समाद सच्चे घर बारा नानक निर्मल नाद सब तुनु सच रामे नाम समाएगा मारू महला पहला जै देखा तै दीन दयाला आय न जाई प्रभ कृपाला जिया अंदर जुगत समाई रहे निराल मराया जग तिसकी छाया जिस बाप ना माया ना तिस भैन ना भराओ कमाया ना तिस ओपत खपत कुल जाती ओह अजरा वरमन पाया तू अकाल पुरख ना ही सरकाला तू पुरख अलेख अगम निराला सत संतोख शब्द अत शीतल सहज पाए लिवलाया त्रै वरताए चौथे करवासा काल विकाल किए एक ग्रासा निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन गुर अनहद शब्द दिखाया उत्तम जन संत भले हर प्यारे हर रस माते पार उतारे नानक रेण संत जन संगत हर गुर प्रसादी पाया तू अंतर जामी जी सब तेरे तू दाता हम सेवक तेरे अमृत नाम कृपा कर दी जय गुर ज्ञान रतन दी पाया पंच तत् मिले हो तन किया आत्म राम पाए सुख थिया कर्म करतूत अमृत फल लागा हर नाम रतन मन पाया ना तिस भूख प्यास मन मानिया सर्ब निरंजन कट कट जानिया अमृत रस राता केवल बैरागी गुरमत पाए सुभाया
अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, शब्द रसाल रसन रस रसना, बेन रसाल वजाया, बेन रसाल वजावै सोई, जां की तर पवन सो जी होई, नानक बूजो एह बिद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारै रहै निरारे, आप तरै संगत कुल तारै, तन सफल जन्म जग आया, घर दर मंदिर जाणै सोई, जिस पूरे गुरते सोजी होई, काया गढ़ महल महली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतुर्दश हाट दीवे दोए साखी, सेवक पंच नाही बिखचाखी, अंतर वस्त अनूप निरोलम, गुर मिलिया हर तन पाया, अंतर वस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिलिया हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आदि जुगादी है पी होसी, सहसा परम चुकाया, तख्त सलाम होवे दिन राती, एहो सच वडाई गुरमत लिव जाती, नानक राम जपो तरतारी, हर अंत सखाई पाया, मारू महला पहला, हर तन संचो रे जन पाई, सतगुर सेव रहो सरनाई, तस्कर चोर ना लागै ताकौ, तुन उपजै शब्द जगाया।

करे अपना हरियात्म राम नाम पाया। सर्व निरंजन पुरख सुजाना अदल करे गुर ज्ञान समाना। काम क्रोध लै गर्दन मारे हम मैं लोभ चुकाया। सच्चै थान वसै निरंकार आया पछाण शब्द विचारा। सच्चै महल निवास निरंतर आवन जान चुकाया। ना मन चलै ना पौन उड़ावै जोगी शब्द अनाह दवावै। पंच शब्द चुनकार निरालम प्रभ आपे वाय सुनाया। पाओ बैरागा सह समाता हमें त्यागी अनहद राता। अंजन सार निरंजन जाने सर्ब निरंजन राया। दुख पै पंजन प्रभ अबनासी रो कटे काटी जम फासी। नानक हर प्रभ सो पहु पंजन गुर मिलया हर प्रभ पाया। काले कवल निरंजन जाने बूझे कर्म सो शब्द पछाने। आपे जाने आप पछाने सब तिसका चोज सबाया। आपे सहो आपे वनजारा आपे परखे परखनहारा। आपे कसव कसवटी लाए आपे कीमत पाया। आप दयाल दया प्रवतारी घट घट रवरया बनवारी। पुरख अतीत वसै ने केवल गुरपुरख पुरख मिलाया। प्रभ दाना बीना गर्भ गवाए दूजा मिटा एक दिखाए। आसा माहे निरालम जोनी अकुल निरंजन गाया। हाँ मैं मेट शब्द सुख होई आ विचारे ज्ञानी सोई। नानक हर जसो हर गुण लाहा सतसंगत सच फल पाया। मारू महला पहला सच कहो सच्चै कर रहना। जीवत मरो पवजल जग तरना। गुर बोयथ गुर बेड़ी तुलहा मन हर जा पार लंगाया। हाँ मैं ममता लोभ विनाशन नौ दर मुक्ते दसवें आसन। ऊपर परै परै परंपर जिने आपे आप पाया। गुरमत ले वो हर लिव तरी अकल गाए जमते क्या डरिय। जत जत देखो ताता तुम ही अवरना दुतिया गाया। सच हर नाम सच है सरना सच गुर शब्द जितै लग तरना। आकथ कथै देखै परंपर फुन गर्भ न जूनी जाया। सच बिन सत संतोख ना पावै बिन गुर मुक्त ना आवै जावै। मूल मंत्र हर नाम रसायण कहो नानक पूरा पाया। सच बिन भवजल जाए ना तरिया एहो समुंद अथाहो महाबिख भरिया। रहया तीत गुरमत ले उपर हर निरपो कै कर पाया। झूठी जग हित की चतराई बिलमना लागै आवै जाई। नाम विसार चले अभिमानी उपजै बिन सिख पाया। उपजै बिनसै बंधन बंदे हमै माया के गलफंदे। जिस राम नाम नाही मत गुरमत सो जमपुर बंद चलाया। गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाई है बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है। गुरमत लेहो तरो भव दुतर मुक्त पाए सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे गुरमत सायर पाहन तारे। गुरमुक्त लेहो परमपत पाई है नानक गुर परम चुकाया। गुरमत लेहो तरो सच तारी आत्म चीनो हृदय मुरारी। जमके फाहे काट हर जप अकुल निरंजन पाया। गुरमत पंच सखे गुर पाई गुरमत अग्नि वार समाई। मनमुख नाम जपो जग जीवन हृदय अंतर लख लखाया। गुरमुख बूझै शब्द पतीजै उस निंदा किसकी कीजै। चीनो आप जपो जगदीसर हर जगन्नाथ मन भाया। जो ब्रह्मांड खंड सो जानो गुरमुख बूझो शब्द पछाणो। घट घट पोगे पोगण हारा रहया तीस सबाया। गुरमत बोलो हर जस उचा गुरमत आखी देख ऊचा। श्रवणी नाम सुने हर बाणी नानक हर रंग रंगाया। मारू महला पहला काम क्रोध पर हर पर निंदा। लब लोभ तज हो निचिंदा। भ्रम का संगल तो निराला हर अंतर हर रस पाया। निस दामन

आपे बख्श लह सुख पाए, सद ही नाम निवासी है। एहो तम धरती शब्द बीजिया पारा, हर साचे सेती वण जवा पारा। सच धन जम्या तोट ना आवै, अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगण आरे नो गुण की जय, आपे बख्श लह नाम दी जय। गुरमुख होवै सो पत पाए, इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ न होई, गुर प्रसादी बूझै कोई। गुरमुख होवै सो तन पाए, सधी नाम निवासी है। अनलवाओ परम पुलाई, माया मोहे सो दना काई। मनमुख अंधे किशु ना सूझै, गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हौमै माया सूते, अपना कारना समा

नानक नाम रते मन निर्मल नामे नाम सवारी है। मारू महला तीजा एको सेवी सदा थिर साचा दूजे लागा सब जग काचा गुरमती सदा सच सालाही साचे ही सच पति जय है। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाता आपे लाए लय जग जीवन दाता आपे बक्से दे वड़े आई।

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बुझ बुझाई, नामे राता पवित सरीरा, बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बुझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वडियाई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख को जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल हे तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद पावे सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है, आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नगरी तो ले तो लो, जी जंत सब सरण तुम्हारी, कर कृपा आप पिछाता है, जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जम्मे चूके फेरी, साचे गुण गावे दिन राती, जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पिछाता है, पाप पुन वर्तै संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवै सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पिछाता है, कीर्तना कोई मेटनहारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पिछाता है, माया मोहे हर स्यो चेतना लागे, दूजे पाए घना दुख आगे, मनमुख परम पुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए, गुणे अवगुण का

एक माया मोहे गर्भ व्यापे, हमें होए रहे है आपे, जमका लैकी खबर ना पाई, अंत गया पछताएंदा। जिन्हें उपाए सोबित जाना, गुरमुख देवै शब्द पछाण, नानक दास कह बेनंती, सच नाम चित लाएंदा। मारू महला तीजा, आद जुगाद दया पद दाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, तुदनो सेवै से तुझै समावै, तू आपे मेल मिलाएंदा। अगमा गोचर कीमत नहीं पाई, जी जंत तेरी सरनाई, ज्यो तुद पावै तवै चलावै, तू आपे मार्ग पाएंदा। हैपी साचा होसी सोई, आपे साजे अवर ना कोई, सबना सार करे सुखदाता, आपे रिजक पहुंचाएंदा। अगमया गोचर अलाख्या पारा, कोई ना जाने तेरा परवारा, अपना आप पछाण आपे, गुरमती आप बुझाएंदा। पातालपुरिया लोहा कारा, तिस विच वरतै हुक्म करारा, हुक्मे साजे हुक्मे ढाहे, हुक्मे मेल मिलाएंदा।

आपे करे कर आए करता, शब्द मरे सोई जन मुक्ता, नानक नाम वसै मन अंतर, नामो नाम ते आएंदा। मारू महला तीजा, जो तुद करना सो कर पाया, पाने विच को विरला आया, पाणा मन्ने सो सुख पाए, पाने विच सुख पाएंदा। गुरमुख तेरा पाणा पावे, सहजे ही सुख सच समावे,

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है। हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानी है। तू सब मैं वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, कला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय इंद्र में बाधी, सो प्रभ राखै पाई है। जी जंत कौर जिक संबाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन मैं थापो थापनहारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्व मैं जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिए सो प्रीतम, वड्डी जिस वड्याई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किस कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंध पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है। प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मंथन में रव्या, जन्म मरण की जो न पव्या, दुख विनाश की आ सुख डेरा, जा तृप्त रहे आ गाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थांथनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर स्वामी परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तंता, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथाहो अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जंत सहत आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुनो, साची कार कमाई है। मन पर तीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जय कार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईसे, तिस बिन दूजा अवर ना दिसे, एका जगत सबाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन दाता, सिमर सिमर जीवे जन तेरे, एक अंकार समाई है। भक्त जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुनी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संगी जोगी नार लपटाणी, उर्ज रही रंग रसमाणी, किरत संजोगी पे एकत्रा, करते भोग बिलासा है। जो पिर करे सो तन तत् मन, पिर तने सिंगार रखे संगन, मिल एकत्र वसै दिन राती, प्रयो दे तने दिलासा है। धन मांगे प्रयो बोबे तावे, जो पावे सो आन दिखावे, एक वस्त को पहुँच ना साके, तन रहती भूख प्यासा है। तन करे बिनो दो कर जोरे, प्रे परदेस ना जाहो वसो कर मोरे, ऐसा बणज करो गृह पीतर, जित उतरे भूख प्यासा है।
सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पही कृपा नानक सतसंगे, तौ धन पिर आनंद उलासा है, तन अंधी पिर चपरसियाना, पंच तत्कार चन रचाना, जिस वखर को तुम आए हो, सो पायो सतगुर पासा है, तन कह तू वस मैं नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो कित ही ना लेख, वचन देहे छोड़ ना जासा है, फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओह पारो ठाकरो जिस कान ना शंदा, जिचर रख है तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता उड़ सिदासा है, जाओ प्रे बचन कह तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर पिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासा है, आईया गया पिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया, ऊड़ सिधायो छूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा है, हरे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुर सेव दिन रात सदेरे, बिन सतगुर पचबुए साकत, निगुरे गल जमफासा है, मन मुख आवे मन मुख जावे, मन मुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मन मुख भोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया, तिस कौन मिटावे जे प्रभ पैराया, सदा आनंद करे आनंदी, जे सिर पाओ पया गल खासा है, हाँ बलिहारी सतगुर पूरे, शरण के दाते बचन के सूरे, ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता, विछड़ ना कत ही जासा है, गुण निदान किश कीम ना पाई, कट कट पूर रहे हो सब ठाई, नानक शरण दीन दुख भंजन, हौरेण तेरे जो दासा है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, करे आनंद आनंदी मेरा, कटकट पूर्ण सिर सिर नबेरा, सिर साहा कै सच्चा साहेब, अवर नाही को दूजा है, हरखवंत अनंत दयाला, प्रगट रहे ओ प्रभ सरब्यो जाला, रूप करे कर वेखै विकसै, आपे ही आप पूजा है, आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा, आपे खेल खिलावै दिन राती, आपे सुन सुन पीजा है, साचा तख्त सच्ची पातशाही, सच खजीना साचा साही, आपे सच तारियो सब साचा, सच्चे सच वर्ती जाहे, सचत पावस सच्चे केरा, साचा थान सदा प्रभ तेरा, सच्ची कुदरत सच्ची बाणी, सच साहेब सुख की जाहे, एको आप तू है वड राजा, हुक्म सच्चे के पूरे काजा, अंतर बाहर सबके जाने, आपे ही आप तीजा है, तू वड़ रसिया तू वड़ भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज कर तेरे, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होवे, देह दान सब सह जंत लोवे, टूट ना आवे पूर भंडार है, तृप्त रहे आगी जाहे, जाचै सिद्ध साधक बनवासी, जाचै जति सती सुखवासी, एक दा तार सगल है जाचक, देह दान सृष्टि जाहे, करे भगत हर रंग अपारा, खिन मैं थापो थापनहारा, पारो तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्श सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने, चतर स्वरूप से आना सोई, जो मन तेरे पावी जाहे, जिस चीत आवै सो वे प्रवाह, जिस चीत आवै सो साचा सहा,
ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਿਸ ਪਹੁ ਕਿਹਾ, ਅਵਰ ਕਹਾ ਕਿਸ਼ ਕੀ ਜਾਹੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈ ਤੂਟਾ ਗੰਡਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ, ਅਮਿਓ ਚੋਲ ਚੋਲ ਪੀ ਜਾਹੇ। ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਅਮਰ ਭਇਆ ਅਬਨਾਸੀ ਥੀਵੈ। ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ, ਗੁਰ ਦੂਰ ਕੀਆ ਪਰਮੀ ਜਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਲਾਗਾ ਪੂਰੇ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੰਗਾ, ਕਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੀ ਜਾਹੇ। ਬਾਰਹਾ ਕੰਚਨ ਸੁਧ ਕਰਾਇਆ, ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਵਨੀਸ਼ ਚੜਾਇਆ। ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸਰਾਫੀ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਤਾਈ ਜਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਮਨ ਭੀ ਜਾਹੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਲਹੇ, ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਗੁਰ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਖਟਕਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲੇ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨਾ ਫਾਸੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਟੇ ਅਪਮਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਜੀ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਭਣੀਐ। ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਦੇਵੈ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਬਿਗਨਾ ਭਗਤੀ, ਹਰ ਪੂਰ ਦਰੜਾਇਆ ਗਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਸਭਨੀ ਠਾਈ, ਜਲ ਥਲ ਪੁਰ ਰਹਿਆ ਗੋਸਾਈ। ਊਚ ਊਨ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨਾ, ਮਨ ਲਾਗਾ ਸਹਿ ਧਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰਪੂਰੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਪਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਏ ਸਮਾਣੀ, ਆਪ ਸੁਣੀ ਤੈ ਆਪ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਜਪੀ ਤੇਈ ਸਭ ਨਿਸਤਰੇ, ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਨੇ ਚਲਥਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣ ਭਾਣੈ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਜਾਚੈ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਲ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸਮੈ ਵਰਤੈ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਕੋਈ, ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਇੰਦਾ। ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਸਵਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਈਐ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੁੱਲੈ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਸੋ ਕਾ ਨਗਰੇ ਹੋ ਕੀਆ, ਸੇ ਉਭਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀਆ। ਤ੍ਰਿਹੋ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰਾ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਅਨਕ ਕਰਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਜੋ ਕੀਜੈ ਸੋ ਬੰਧਨ ਪੈਰੇ। ਕਰੁਤਾ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਹੀਂ ਜਨ ਜੰਮੈ, ਸਭ ਲਾਹਾ ਮੂਲ ਗਵਾਏਂਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪਰਦਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਂਦਾ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਵਾ, ਸਭ ਕਾਲੈ ਵਸੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ। ਨਿਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਨਾਸੀ, ਸੋ ਨਿਚਲ ਜੋ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਫਿਰ ਸਰਲੈ ਸਲ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੁਆਰੈ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਜਿਤ ਮੰਤ੍ਰ ਪਤਾਸੈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਠਹਿਰਾਏਂਦਾ।
रूड़ो ठाकुर कित वस न आवै, हर सो किश करे जे हर क्या संता पावै, कीता लोड़न सोई करायन दर फेर न कोई पाएंदा, जिथे औकट आए बंत है प्राणी तिथे हर त्याई है सारिंग पानी, जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई तिथे हर आप छड़ाएंदा, वड्डा साहेब अगमा था क्यों मिलिए प्रवे प्रवाह, काट सिलक जिस मार्ग पाए सो विच संगत वासा पाएंदा, हुक्म बूझै सो सेवक कही है बुरा भला दो संसार सही है, हाँ मैं जाए ता एको बूझै सो गुरमुख सही समाएंदा, हर के भगत सदा सुखवासी बाल सुभाए अति तो दासी, अनकर अंग करै बो पाती जो पिता पूत लाडाएंदा, अगमा गोचर कीमत नहीं पाई ता मिलिया जा ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पाया तिन जन कहो जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा, तू आपे करता कारण करना सृष्टि उपाय धरी सब धरना, जन नानक शरण पया हर द्वार है हर भावै लाज रखाएंदा, मारू सोलहे महला पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद, जो दिसै सो एको तू है बाणी तेरी सरवणी सुनिए, दूजी अवर ना जाप सकाई सगल तुम्हारी धारणा, आप चितारे अपना किया आपे आपे आप प्रभथिया, आप उपाय रचियोन पासारा आपे कटकट सारणा, एक उपाय वड़ दरबारी एक उदासी एक करबारी,

जो तुद पाणा से कर्म कमाए, तुझ ते बाहर किशु ना होवा तापी नाही किश काड़ा। उहां हुक्म तुम्हारा सुनिया, इहां हर जस तेरा पढ़िया। आपे लेखा लेखा आपे, तुम से हो नाही किश चाड़ा। तू पिता सब बारक थारे, ज्यो खिलावे त्यों खेलन हारे। उजड़ मार्ग सब तुम ही की ना चले, नाही को वे पाड़ा। एक बैसाए रखे ग्रह अंतर, एक पठाए देह दसंतर। एक ही कौ कास, एक ही कौ राजा, इन में कही है क्या कूड़ा। कमन सो मुक्ति, कमन सो नरका, कमन सहसारी, कमन सो भगता, कमन सो दाना, कमन सो होछा, कमन सो सुरता, कमन जड़ा। हुक्मे मुक्ति, हुक्मे नरका, हुक्म संसारी, हुक्मे भगता, हुक्मे होछा, हुक्मे दाना, दूजा नाही अवर तड़ा। सागर की ना आत्म पारा, एक खड़े रसा तलकार, मनमुख गावारा।

पौड़ी पाणै हुक्म नायोन पाणै सुख पाया पाणै सतगुर मेलियोन पाणै सच ते आया पाणै जेवड होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जग त्यो पाया। श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद। महला तीजा मन की पत्री वचनी सुखी हूं सुखसार सो ब्राह्मण पलाया खीए जे बुझे ब्रह्म विचार हर साल आहे हर पड़े गुर कै शब्द विचार आया ओ प्रवान है जे कुल का करे उधार अगै जात न पुछिए करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना बिखिया नाल प्यार अंदर सुख ना हो गई मनमुख जन्म खुवार नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म न बूझे खसम का सोई नर कच्चा जित पावै तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर सबदी रचा गुरमुख सदा सलाही है।